फसन फसो माया में जो चक्कर फिरा के रे केसो फसन फसो माया में जो चक्कर फिरा के रे भजन ना पायो।

जब भए बूढ़े ओ जब धन ढूंढे मिले कामा। जब भए बूढ़े ओ जब धन ढूंढे मिले कामा। बाल भए भूरे गर्भ भए चूरे अब का करे लाल। बाल भए भूरे गर्भ भौ चूरे अब का करे लाल। खाल सुकड़ गई हड्डी।

अवधपुरी रघुवंश में फूटी के कैसी जारानी, अवधपुरी रघुवंश में

जाओ रगे पीर रे आज बिनय सुन लो हमार।

उठा सा टुका नारद देखे करम की रेखा सात मन से भज लो रे हरी तन से भज लो रे हरी।

ए अमारो नाथ की अमारो कहानी सब जग में हो गई हो सीता। ए मन से भजलो रे हरी, तन से भजलो रे हरी।

0: चुभकर बदलती जलवायु के लिए तैयार हूं।
1: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपका रेडियो साथी मनीष
2: और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त वर्षा। हेलो हेलो हेलो, मैं यानी के वर्षा, आपकी आरजे वर्षा, और हम दोनों लेकर आए हैं आप सभी के लिए एक नया कार्यक्रम जिसका नाम है क्लाइमेट काउंटडाउन। जी हाँ साथियों, और इस कार्यक्रम को हम सुनेंगे अपने शुभ कल कार्यक्रम में।
1: तो सबसे पहले सभी श्रोता साथियों का पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि यह क्लाइमेट काउंटडाउन क्या है। हमने कई उल्टी गिनती के बारे में सुना है, जन्मदिन से लेकर आईपीएल और नए साल तक, लेकिन यह क्लाइमेट काउंटडाउन क्या है?
2: बिल्कुल सही कहा मनीष जी आपने। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि क्लाइमेट काउंटडाउन एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की श्रृंखला है जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। जलवायु परिवर्तन वास्तविकता है और इसके बदलाव के लिए हम सभी समान रूप से जिम्मेदार हैं। हमारे पास हानिकारक प्रभाव को उलटने के लिए बहुत कम समय है, और यदि हम अभी कार्य नहीं करते हैं तो हम सभी को बाद में पछताना पड़ सकता है।
1: सच है दोस्तों, क्योंकि आप सभी ने देश में हाल फिलहाल में आई तबाही को देखा होगा। बेंगलुरु में बेजोड़ बारिश के साथ बाढ़ जैसे हालात, उत्तराखंड में बादल फटना, हिमाचल प्रदेश में अचानक आई बाढ़ और तटीय क्षेत्रों में चक्रवातों होती हैं उनकी बढ़ती संख्या, उत्तर भारत में गर्मी की लहरें, सूखा और न जाने कितनी ऐसी कितनी प्राकृतिक आपदाएं आपने देखी होगी।
2: अरे मनीष जी, अरे सिर्फ बेंगलुरु में ही नहीं बल्कि उत्तरी भारत में पिछले कुछ दिनों से बेमौसम बारिश भी एक चिंता का विषय बन गया है। क्या आपने कभी गौर किया है कि पिछले कुछ वर्षों में मौसम का अनुमान लगाना कितना मुश्किल हो गया है? सर्दियों के लिए आपको मध्य दिसंबर का इंतजार करना पड़ता था, सितंबर का महीना ऐसा लगता है जैसे जून और मई की गर्मी हो, और अब अक्टूबर के महीने में बिन मौसम बारिश, ऐसा लगता है जैसे मैंने सीजन की पारंपरिक समझ खो दी है कि मौसम कब शुरू हुआ और कब खत्म होता है।
1: हाँ, हमें हमेशा से सिखाया गया कि चार मौसम होते हैं, लेकिन अब मौसम के बदलते मिजाज को देखें कि ये बताना मुश्किल हो जा रहा है कि आखिरकार कौन सा मौसम गर्मी का है या कौन सा बरसात का है।
2: सही कहा तुमने। नेप्स स्पियर्स समाचारों की तुलना में मौसम से संबंधित खबरों पर अधिक ध्यान देते हैं। तो मनीष जी, हम इसका क्या मतलब निकालें? क्या मौसम में बदलाव सामान्य हो, मौसम स्थिर नहीं है, तापमान और वर्षा में ये दीर्घकालीन बदलाव जलवायु परिवर्तन की घटना का एक हिस्सा है?
1: इन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जाना आवश्यक है, बस इसलिए हम लेकर आए हैं हमारा ये स्पेशल कार्यक्रम क्लाइमेट काउंटडाउन। दोस्तों, इस सीरीज के माध्यम से आप जानेंगे कि जलवायु परिवर्तन क्या है, इसके कारण क्या है, इसके क्या प्रभाव है। इस सीरीज में हम आपको ये भी बताएंगे कि हमें जलवायु परिवर्तन की परवाह क्यों करनी चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि किस तरीके से इससे लड़ सकते हैं और अपने पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते हैं।
2: मैंने अक्सर लोगों को बात करते सुना है कि हम कैसे जलवायु परिवर्तन से अपने क्लाइमेट को बचा सकते हैं। यह प्रकृति की इच्छा है कि यह कैसे विकसित होता है, हम इसे नियंत्रित नहीं कर सकते, और अगर हम कुछ कर भी सकते हैं तो यह सरकार का काम है, आम लोगों का नहीं। लेकिन दोस्तों, प्रकृति में बदलाव का कारण मानवीय गतिविधियां हैं जो जलवायु परिवर्तन की मुख्य संचालक हैं। हमारे जैसे सामान्य लोग ही इस परिवर्तन का कारण बन रहे हैं, और हम सब मिलकर इस कुछ सरल क्रियाओं को अपने दैनिक जीवन में अपनाकर इस समस्या से लड़ने में मदद कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा वर्षा, और एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं आपसे और कुछ और बातें करेंगे पर्यावरण और उसमें हो रहे बदलाव के बारे में। तो आइए सुनते हैं।
3: वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार, धरती माँ की यही पुकार।
1: तो यहाँ हम एक बहुत सी दिलचस्प कहानी के साथ वापस आ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं सभी श्रोताओं का एक बार पुनः। हमारी कहानी दो किरदारों से बनी हुई है, एक सनी और उसकी दादी की इर्द गिर्द घूमती है। ज्यादातर लोगों की तरह दादी भी जलवायु परिवर्तन से जुड़ी कई बातें नहीं समझ पा रही हैं। वह मौसम, जलवायु और पर्यावरण के बीच के अंतर को लेकर उलझन में है। वह ये सोचती हैं कि उसके समय में चीजें आसान थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को।
3: बेटा सुनो, मैंने आज अखबार में पढ़ा कि पिछले 75 सालों में सितंबर का सबसे गर्म दिन है। क्या हो रहा है? यह सामान्य से कहीं अधिक गर्म है और मुझे याद नहीं है कि सितंबर में पहले कभी इतना उच्च तापमान दर्ज किया गया हो।
4: अरे दादी, पृथ्वी अस्वस्थ है, उसे तेज बुखार है और संक्रमण के लिए हम जिम्मेदार भी हैं। मैं पिछले 7 वर्षों के बारे में नहीं जानता, लेकिन मुझे पता है कि मेरे पिछले 16 वर्षों में मैंने इस तरह के गर्म मौसम का

0: अनुभव नहीं किया। निश्चित रूप से ग्रह अधिक गर्म है और इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जलवायु अब बदल रही है। मेरे शिक्षक कहते हैं कि यह सब जलवायु परिवर्तन से संबंधित है।
1: जलवायु परिवर्तन? पर यह जलवायु परिवर्तन क्या है और ये मैं कितना गर्म महसूस कर रही हूँ, कैसे संबंधित है ये? क्या जलवायु मौसम से अलग है? मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना।
0: दादी इधर आओ, जलवायु और मौसम दो अलग अलग चीजें हैं। मैंने EBS शिक्षक ने मुझे बताया कि किसी स्थान का मौसम वातावरण की अस्थायी स्थिति है, जैसे आंधी या गर्म दिन जो कुछ घंटों, दिनों या हफ्तों में होता है। जलवायु एक स्थान के औसत मौसम है जो लंबी अवधि लगभग 30 साल या उससे अधिक तक फैला हुआ है।
1: आप जो कुछ भी कह रहे हैं वह मेरे लिए समझ से बाहर है, कृपया मुझे इसे सरल भाषा में समझाएं।
0: अरे मोरी प्यारी दादी, ठीक है, अब ध्यान से सुनो। मौसम की स्थिति अल्पकालिक परिवर्तन है, जबकि जलवायु एक दीर्घकालीन घटना है जो किसी स्थान के सामान्य मौसम को लंबी अवधि के लिए संदर्भित करती है। मनुष्य कुछ ऐसे काम कर रहा है जिससे पृथ्वी की जलवायु तेजी से बदल रही है। ये परिवर्तन मौसम में व्यवधान पैदा करते हैं। और तो और दादी, गर्मी की लहरें, बारिश में देरी, अचानक बाढ़ आना, बार बार सूखा पड़ना, भूस्खलन और फसल खराब होना, ये सभी जलवायु परिवर्तन के कारण है दादी। मानवीय गतिविधियां ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाकर ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती हैं दादी।
1: अरे बेटा, अब ये ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है?
0: ओहो दादी, यह तब होता है जब कुछ गैसें जिन्हें ग्रीन हाउस गैसों के रूप में जाना जाता है पृथ्वी के वायुमंडल में जमा हो जाती हैं।
1: रुको रुको बेटा, यह कैसा माहौल है और अब यह कहाँ से आया?
0: अरे दादी, वातावरण गर्मी को पकड़ लेता है और उसे निकलने नहीं देता है, जिससे तापमान नियंत्रित रहता है। यानी पृथ्वी ना ज्यादा गर्म रहती है और ना ही ज्यादा ठंडी रहती है। यह जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसे बनाए रखने और हानिकारक यूवी किरणें को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से रोकने के लिए जिम्मेदार है।
1: हर बार जब आप कुछ कहते हैं बेटा जी, तो आप उन अवधारणाओं और शब्दों का परिचय देते हैं जो मुझे समझ में नहीं आता। सरलता से समझाएं, मुझे यह भी बताएं कि यूवी किरणें क्या हैं।
0: ओ मेरे दादी, यह इतना जटिल नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे जब बहुत ठंड होती है और आप परतें पहनते हैं, एक ऊनी ब्लाउज, एक स्वेटर और फिर एक शॉल। इसी तरह वातावरण को उन परतों की तरह समझें, एक कम्बल जो इसे बचाने के लिए पृथ्वी को घेरता है। यह मुख्य रूप से ऑक्सीजन से बना होता है जिसमें हम सांस लेते हैं, ऑर्गन और नाइट्रोजन। यह हमें सुरक्षा प्रदान करता है और हानिकारक यूवी किरणों को पृथ्वी से दूर रखता है। वायुमंडल पृथ्वी के तापमान को नियंत्रण करता है। यह एक सुरक्षा कवच है, आपकी शॉल की तरह, जैसे आपका शॉल है उसी तरह। क्या अब समझ में आता है?
1: ठीक है बेटा, तो वातावरण, मौसम और जलवायु सभी जुड़े हुए हैं और एक में परिवर्तन से दूसरे में परिवर्तन होता है, इतना तो मैं समझ चुकी हूँ। लेकिन सनी बेटा, मुझे कुछ बताओ, क्या अलग अलग मौसम जैसे वसंत, गर्मी, मानसून, सर्दी और शरद ऋतु में भी जलवायु का हिस्सा है?
2: सन्नी एक धैर्यवान लड़का था। दरअसल उन्हें इस बातचीत में मजा आने लगा था। एक बार के लिए उन्होंने दादी से ज्यादा ज्ञानी महसूस किया।
0: हाँ दादी, वे सभी जुड़े हुए हैं। मौसम एक वर्ष में

0: तुम्हारी उम्र की थी, हम अक्टूबर के महीने में अपने कम्बल और सर्दियों के कपड़े निकाल देते थे, लेकिन अब हम दिसंबर के मध्य तक मुश्किल से सर्दियों के कपड़े पहनते हैं। क्या जलवायु परिवर्तन भी इसका कारण है?
1: इसके लिए जलवायु परिवर्तन जिम्मेदार है दादी। जैसे जैसे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, मौसमी परिवर्तन अधिक अप्रत्याशित हो जाते हैं।
0: सनी बेटा, मुझे एक बात बताओ कि क्या यह जलवायु परिवर्तन केवल शहरों को प्रभावित कर रहा है या ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को भी जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होते हैं?
1: दादी, जलवायु परिवर्तन ने किसी को नहीं बख्शा। फिर लोग इसके बारे में अधिक बात क्यों नहीं कर रहे हैं और कोई समाधान क्यों नहीं देख रहा है? दादी, मुझे लगता है मैंने आपको एक दिन के लिए पर्याप्त जानकारी दे दी है।
0: नहीं, लेकिन माहौल के बारे में और बताओ।
2: लेकिन दादी ने जोर देकर कहा कि सनी ने जितना साझा किया था, कहीं अधिक वह अवशोषित कर सकती हैं। कोई विकल्प ना रह जाने पर वह समझाने लगा।
1: दादी, वातावरण 5 प्रमुख परतों, तापमान और पृथ्वी से दूरी के आधार पर समताप मंडल वायुमंडल की दूसरी परत है। स्ट्रेटोस्फीयर के भीतर एक ओजोन ढाल या परत है जो सूर्य के अधिकांश पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करती है।
0: ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो मैं मान रही हूं, अब हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है ना?
1: हाँ दादी, ये बहुत खतरनाक होते हैं क्योंकि यह मानव त्वचा जैसे जीवों की सुरक्षात्मक परतों में प्रवेश कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं ये किरणें हम तक कैसे पहुंचती हैं?
0: अगर मुझे इतने जटिल प्रश्न का उत्तर पता होता तो क्या मैं आपके साथ यह बातचीत कर रही होती, चतुर साहब?
1: दादी, बहुत सही। ओजोन परत पतली हो रही है क्योंकि हमने रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज, एसी जैसे उपकरणों का उपयोग बढ़ा दिया है। वे क्लोरोफ्लोरोकार्बन या सीएफसी के रूप में जानी जाने वाली गैस छोड़ते हैं जिससे पृथ्वी के वातावरण और जलवायु में गंभीर परिवर्तन हुए हैं।
2: दादी चिंतित थी। उसने जवाब दिया कि यह इतनी गहरी चिंता का विषय है, तो लोग इस मुद्दे पर अधिक बात क्यों नहीं कर रहे हैं?
1: मैं मानता हूँ कि इस मुद्दे पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन क्या करें दादी, लोग उन्हें पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं कर पा रहे हैं।
2: दादी अब बहुत डर गई थी। वह सवाल पूछने लगी कि
0: हम इस मुकाम पर कैसे पहुंचे? सनी बेटा,
2: उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारी पुरानी और वर्तमान पीढ़ियों ने आने वाली पीढ़ियों के लिए ग्रह को बचाने के लिए पर्याप्त नहीं किया। दादी स्तंभ रह गईं। वह सोचने लगी कि और क्या किया जा सकता है। वह सनी से बात करना चाहती थी, लेकिन तब तक सनी के ट्यूशन जाने का समय हो गया था। उन्होंने दादी से वादा किया कि वे हर दिन जलवायु परिवर्तन पर चर्चा करेंगे और वह उन्हें बताएंगे कि उनकी पीढ़ी अलग तरीके से क्या कर सकती थी। सनी ने अपना बैग उठाया और चला गया। दादी अपने अखबार में वापस आ गईं और सबसे गर्म दिन पर समाचारों को समझने की कोशिश करने लगीं।

0: दोस्तों, दादी और सनी की बातचीत ने वास्तव में हम सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। हमें अपने कार्यों पर ध्यान देने की जरूरत है जो मौसम और जलवायु को प्रभावित करते हैं। हमारे कार्यों से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है और हमें इस पर ध्यान देना और तुरंत कार्रवाई करने की आवश्यकता है।
1: अरे वर्षा, न केवल तेज गति से जलवायु बदल रहा है बल्कि इस तरह की समस्याओं से पृथ्वी ग्रह को अपनी रक्षा करने के लिए सभी प्राकृतिक सुरक्षा से समझौता

0: किया गया है। ओजोन परत जो कि वायुमंडल की एक पतली और महत्वपूर्ण परत है, घट रही है। वो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें पौधों, जानवरों और मनुष्यों को समान रूप से नुकसान पहुंचा रही हैं। अनियंत्रित मानवीय कार्यों के परिणाम स्वरूप पर्यावरण में गंभीर परिवर्तन हुए हैं, जिसका परिणाम पहले से भुगत रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए और भी बुरा हाल होगा।
1: प्रिय मित्रों और श्रोताओं, आइए हम इतने निराश ना हों, जबकि स्थिति गंभीर है। यह निराशाजनक नहीं है। इस तथ्य के बावजूद कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है, हमारे पास अभी भी अपने कार्यों को उलटने का समय है। हम जिन सरल क्रियाओं को अपनाते हैं और उनका उपयोग करते हैं, उनके जितना हम सोच सकते हैं उससे कहीं अधिक व्यापक परिणाम हो सकते हैं। हम में से हर एक छोटे छोटे उपायों से जलवायु परिवर्तन से लड़ने में योगदान दे सकता है, जिन्हें हम अपनाते हैं।
0: सकारात्मकता के लिए धन्यवाद वर्षा। हाँ दोस्तों, अगर हम सब मिलकर काम करने और समाधान के बारे में सोचने का फैसला करते हैं और नई और पुरानी प्रथाओं से सीखते हैं, तो हम जलवायु परिवर्तन का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन हमें अब कार्रवाई करनी होगी। अगले सप्ताह उसी समय ट्यून करना ना भूले क्लाइमेट काउंटडाउन के अगले एपिसोड में। यदि आपके कोई प्रश्न है तो हमें पूछ सकते हैं हमारे इस नंबर पे। नंबर है हमारा
1: 9425141726। और श्रोताओं, हमारा पत्र लिखने का पता भी है। हमारा पता है
0: रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तगेला के पास ओरछा।
1: हम अभी के लिए आपकी छुट्टी लेते हैं, लेकिन अपने स्वयं के रेडियो बुंदेलखंड पर बने रहें, सुनते रहें रेडियो बुंदेलखंड 90.4, अपना रेडियो अपनी बातें। तो साथियों, चलते हैं इस कार्यक्रम से, फिर होगी मुलाकात अगली श्रृंखला में। तब तक के लिए नमस्कार।
2: पेड़ पौधों से करोगे प्यार तो रहेगा जीवन खुशहाल। वृक्षों को कटने से बचाओ, वृक्ष ही जीवन है। वृक्ष लगाइए, जीवन बचाओ।

0: कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपके रेडियो दोस्त वर्षा
1: और मैं हूं आपका रेडियो साथी मनीष,
0: लेकर हाजिर हैं आपका कार्यक्रम हम होंगे कामयाब। श्रोताओं आज हम होंगे कामयाब में हम बात करेंगे व्यक्तित्व विकास की, कि जो हमारा व्यक्तित्व विकास है उसके लिए हम कुछ टिप्स आपके लिए लेकर आए हैं और जो बहुत ही ज्यादा उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं आपके लिए अगर आपने सही तरीके से उनका इस्तेमाल किया तो।
1: क्योंकि देखा जाता है कि जब तक आपका व्यक्तित्व विकास नहीं होगा तब तक आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि बहुत सारे ऐसी जगह रहते हैं जहां पर आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं। यदि आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपका अच्छा है, बोलने का तरीका अच्छा है, और क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखना चाहिए, ये बातें अहम रहती हैं जब तक जब आप किसी बड़े इंटरव्यू के लिए जाते हैं या फिर आप नए करियर की शुरुआत करते हैं। तो कुछ बातें हैं जो हमें बेहद जरूरी जानना है, क्योंकि देखा जाता है कि कैरियर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कुछ बातें रहती हैं व्यक्तित्व विकास के लिए। सरल परिभाषा में कहा जाता है कि व्यक्ति के आचरण, व्यवहार, शिक्षा, योग्यता, शालीनता, पहनावा, उदारता, त्याग, क्षमा, बौद्धिकता जैसे तत्वों को अपनाकर जो अपनी छवि को औरों से अलग प्रस्तुत करता है उसे ही व्यक्तित्व विकास कहा जाता है।
0: इसके साथ ही साथ जिंदगी के प्रत्येक क्षेत्र में यदि आप किसी को भी प्रभावित करना चाहते हैं तो आपको बेहतर प्रदर्शन करने होगा। इसके लिए आपको किसी को भी आकर्षित करने का हुनर आना चाहिए। यह तभी हो सकता है जब आपके अंदर श्रेष्ठ गुणों का समावेश हो। अब हम आपको बताते हैं कि वह गुण या टिप्स कौन से हैं।
1: सबसे पहला होता है कि संतुलित एवं सुंदर आपका शरीर होना चाहिए। ये आपको

0: वो बताता है, आपके व्यक्तित्व को पहचानता है, क्योंकि संतुलित शरीर से व्यक्ति की पहचान होती है, जिससे व्यक्ति के हाव भाव, चाल चलन, उठने बैठने और कार्य करने की क्रिया का पता चलता है। इसलिए शरीर हमेशा ऊर्जावान होना चाहिए तथा थकावट और आलस्य जैसे अवगुण आपके शरीर में नहीं होना चाहिए।
1: इसके बाद आपको शरीर की बनावट पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि आप जिम जाकर सिक्स पैक बनाएं, अपितु ना अधिक मोटा ना अधिक दुबला होना चाहिए। आप नियमित संतुलित आहार लेकर एवं नियमित व्यायाम करके संतुलित शरीर का विकास कर सकते हैं।
0: सुंदरता किसी को भी आकर्षित करने का केंद्र होती है। इसमें शरीर के काले और गोरे रंग का महत्व तो नहीं होता है। इसके लिए आपको शरीर के नाजुक अंगों जैसे आंख, बाल, नाखून, त्वचा आदि का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। इसके पश्चात साफ, स्वच्छ, कंफर्टेबल और फैशन के अनुसार कपड़े पहने, लेकिन फैशन की आड़ में फटे हुए और बेशर्मी वाले कपड़ों को परहेज करें, क्योंकि इससे आपका व्यक्तित्व नीचा होता है। आपको बता देना चाहते हैं, दूसरा गुण आपके अंदर उत्तम विचार होना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी के सामने अपनी बात को रखते हैं तो आपके विचारों को देखा जाता है कि आपके विचार किस तरीके से हैं।
1: बिल्कुल, और विचारों से ताकतवर कोई और हथियार नहीं होता, यानी कि विचारों से ज्यादा ताकतवर कोई और दूसरा हथियार नहीं होता है। विचारों की वजह से ही व्यक्ति को नई दिशा मिलती है और यह कुछ भी करवा सकती है। अच्छे वातावरण में रहने से, अच्छी किताबें पढ़ने से, खुली जगह में वायु का सेवन करते रहने से सरलता से ही हमारे मन को अच्छे परिणाम मिलते हैं और वे परिणाम ही हमारे विचारों का निर्माण करते हैं।
0: इसके अलावा आपका विद्यालय उत्तम हो, जिससे आपको उत्तम शिक्षा मिलेगी और आप में उत्तम विचारों का समावेश होगा, और साथ साथ में पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए विचारों का अहम योगदान रहता है। इसके लिए आपके विचार अच्छे होना चाहिए। जब आपके विचार अच्छे होंगे तो सामने वाला या इंटरव्यू लेने वाला आपसे प्रभावित होगा और आपकी आत्मविश्वास को जगाएगा। आत्मविश्वास का होना ये भी बहुत ज्यादा बड़ी बात होती है और एक अच्छी बात होती है कि आत्मविश्वास आपके अंदर होना चाहिए कि हम ये काम को कर लेंगे।
1: बिल्कुल, यदि आपके अंदर किसी काम में पूर्ण योग्यता होने के बावजूद भी उस काम को लेकर से इनकार कर देता है, या आपको किसी विषय का पर्याप्त ज्ञान होने के बाद भी उसे किसी के सामने व्यक्त नहीं कर पाते हो, इसका प्रमुख कारण है आत्मविश्वास की कमी। जी हाँ श्रोताओं, इसलिए आत्मविश्वास हासिल करने के लिए अपने गुण अवगुण का विश्लेषण कर अपने व्यक्तित्व के अंदर मौजूद कमियों को दूर करना चाहिए। इसके अलावा यदि आप अधिक शर्मीले हैं, हीन भावना से ग्रस्त हैं, अभिमानी हैं, या आप में किसी का भय है, तो आपको इन कमियों को जल्द से जल्द दूर करना चाहिए। जबकि किसी इंसान के अंदर मौजूद गुणों से ही उसका व्यक्तित्व बनता है, इसमें आत्मविश्वास बहुत ही आवश्यक है। युवा पीढ़ी में इस गुण का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनका भविष्य सामने होता है। अतः आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आपके भीतर आत्मसम्मान, प्रतियोगिता में भाग लेना जैसे गुणों का समावेश होना चाहिए, जो कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बेहतर है।
0: दोस्तों, और भी बातें हैं जो आपके व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत जरूरी हैं, जैसे कि विनम्रता अपनाएं, बातचीत की कला, सुनना या कम बोलना सीखें। ये सारी बातचीत जो रहती है आपके व्यक्तित्व को निखारती है। ये बातचीत आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत जरूरी रहती है। मित्रों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले हम एक अच्छे से लोकगीत को सुन लेते हैं। इसके बाद बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे और भी व्यक्तित्व विकास के जो टिप्स हैं, व्यक्तित्व विकास के गुण होते हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में।
1: तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं यहाँ पर एक बढ़िया सा लोकगीत।

0: बाद एक बार फिर से स्वागत है श्रोताओं कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में, जहां पर हम बात कर रहे हैं व्यक्तित्व विकास की। अभी हमने बात की श्रोताओं के आत्मविश्वास होना चाहिए हमें खुद पर। आगे हम बात करेंगे कि विनम्रता अपनाएं। बिल्कुल श्रोताओं, आपकी वाणी में मधुरता का स्वर होना चाहिए, जिससे आप अनगिनत दोस्त बना सकते हैं। इसके ठीक उल्टा अनगिनत दुश्मन भी आप, इसलिए आप कभी भी अपनी शिक्षा प्रतिभा योग्यता को ओढ़ते हुए किसी से बात ना करें, अपितु ऐसे बने रहें कि हर कोई आपसे मिलने की एवं बात करने की चाह रखे। इसके साथ ही साथ आप गुस्से पर काबू रखें और किसी कमजोर व्यक्ति का मजाक ना बनाएं। मजाक उसी का उड़ाने में मजा है जो अपने को आपसे ज्यादा ताकतवर समझता है। इसी गुण से व्यक्तित्व विकास में इजाफा होता है।
1: ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि विनम्रता अपनाए के साथ साथ हमें बातचीत की कला भी होना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी के सामने बातचीत करते हैं तभी आपका व्यक्तित्व पहचानता है कि आप किस तरीके से बात कर रहे हैं। तो आप किसी साधारण व्यक्ति से बात कर रहे हैं या किसी पोस्ट ग्रेजुएशन व्यक्ति से आपको बातचीत करने के दौरान बार बार आंखें मटकाना, शर्माना, अटकना और मुख मुद्रा बिगाड़ने से बचना चाहिए और अपनी बॉडी लैंग्वेज का उपयोग कर नेत्र संपर्क बनाए रखना चाहिए। बहुत बड़ी बातचीत होती है, ये एक कला होती है व्यक्तित्व विकास की, ये कला होती है आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, क्योंकि बातचीत के वक्त आपकी एक निश्चल मनमोहक प्यारी मुस्कान किसी भी व्यक्तित्व पर विशेष प्रभाव डालती है। लेकिन आपकी यह मुस्कान नकली या बनावटी ना लगे, यह नेचुरल रूप से शरीर के अंदर से आनी चाहिए। आपकी एक मुस्कान सामने वाले व्यक्ति के अंदर आपकी सैकड़ों तारीफें बयां कर देती हैं, इसलिए आप मुस्कुराने का प्रयत्न कीजिए। इसके अलावा आप अपनी जिंदगी में बहुत से लोगों से मिलते हैं और कुछ दिन बाद भूल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिल पर गहरी छाप छोड़ जाते हैं। इसे रचनात्मक कहते हैं। और आप शायरी, लघु कथा, घटना, दुर्घटना, कहावत आदि से अपनी बातचीत में रचनात्मकता शामिल कर बेहतर प्रभाव आप डाल सकते हैं।
0: बिल्कुल, ऐसे और कई सारे ऐसे टिप्स हैं श्रोताओं जो आप सबके लिए बेहद फायदेमंद साबित होने वाले हैं। एवं यहाँ पर हम बात करेंगे सुनना और कम बोलना सीखें, क्योंकि कई बार होता क्या है श्रोताओं के हम बोलते जाते हैं, हम सामने वाले की बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। तो यहाँ पर यह बहुत अच्छी बात है कि हमें सुनने की भी आदत डालनी चाहिए। यह वास्तविकता हमारी जिंदगी से करीब करीब समाप्त हो गई है। आज हम किसी व्यक्ति की बात कम सुनते हैं पर ज्यादा

0: बोलते हैं। अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो उसकी बातों पर पूरा फोकस करें और जिस विषय पर चर्चा हो रही हो उससे संबंधित अगर आपके मन में कुछ प्रश्न हो तो अवश्य पूछें।
1: वार्तालाप के दौरान आप बीच में दखल ना दें और ना ही रुकावट बने, समझदारी से बात करें एवं बीच बीच में आप अपना सिर हिलाएं और जी हाँ अवश्य कहें, जिससे सामने वाले व्यक्ति को यह महसूस होना चाहिए कि आप उस व्यक्ति की बात गंभीरता से सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। हालांकि आप जितना हो सके चुप रहें, क्योंकि ज्यादा बोलने वाले और खुद की तारीफ करने वाले व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता है। आप एक पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति बनिए जो जरूरत के वक्त अपनी बात को व्यक्त कर सके। चुप रहने वाले व्यक्ति या कम बोलने वाले व्यक्ति से हमेशा लोग बातचीत करने के लिए उत्सुक रहते हैं और इसी वजह से कोई भी व्यक्ति बेहद आकर्षित होकर उस व्यक्ति के बारे में जानना चाहता है जो व्यक्तित्व विकास के लिए एक अच्छा गुण रखता है। तो ये बातें रहती हैं जो आपके व्यक्तित्व विकास को निखारने में बहुत ज्यादा जरूरी रहती हैं, क्योंकि इन बातों के बारे में आप यदि आप सोचते हैं ये बातें आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रहती हैं। आप सामने वाले को माफ करना या माफी मांगना सीखें, ये भी एक व्यक्तित्व विकास का एक पहलू रहता है। इसका भी हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई भी अपमानित आपको करता है, अपशब्द कहता है, बुरा व्यवहार करता है, तो आपके मन में उस व्यक्ति के लिए नफरत पैदा हो जाती है। ऐसा होना ही नेचुरल है, लेकिन कुछ समय बाद उसको अपनी गलती का एहसास होता है, वह आपसे माफी मांगने आता है और आप उसे मुंह मत मोड़िए और उसे तुरंत माफ कर दीजिए, क्योंकि वही व्यक्ति माफ करता है जो अपने तन मन से घृणा बुराई कलेश को दूर करना चाहता है, अपने दिल में पवित्र करना चाहता है। इसके ठीक उल्टा यदि आपसे कोई गलती हो जाए तो आप माफी मांगने से पीछे मत हटिएगा, क्योंकि जिसमें सीखने की असीमित क्षमताएं होती हैं वही व्यक्ति माफी मांगता है और माफी मांगने से आपके अंदर एक नई ऊर्जा का निर्माण होता है जो सर्वोच्च व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत ज्यादा अहम रहता है।
0: बिल्कुल सही कहा है आपने। तो कभी भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके द्वारा या किसी और के द्वारा कोई गलती हुई है और अगर सामने वाला आपसे माफी मांगने के लिए आ रहा है तो उसे माफ भी कर दें। अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो आप भी उससे माफी मांग सकते हैं। ये हमारे एक व्यक्तित्व विकास की बहुत अच्छी कड़ी होती है जिस पर हम कायम रह सकते हैं। आगे अगर हम बात करें सकारात्मक नजरिया, यानी कि पॉजिटिव सोच हमेशा बना के रखें। सकारात्मक नजरिए से आशा यह है कि इस जीवन में अपने कर्तव्यों, निर्णयों, संकटों, उलझनों, रुकावटों, संघर्षों, दैनिक व्यवहारों तथा अन्य किसी भी कार्य में कामयाब होने के लिए आपका नजरिया सकारात्मक होना चाहिए। अगर आप निराशा से आशा प्राप्त करने के लिए आगे की ओर बढ़ते हैं तथा जिंदगी की समस्याओं से विचलित ना होकर समस्याओं का समाधान करते हैं, हर बुराई में अच्छाई की तलाश करते हैं, तो आपका नजरिया सकारात्मक है। इसके ठीक उल्टा अगर जाएंगे तो आप नकारात्मक नजरिए का शिकार होंगे जो आपके वर्तमान एवं भविष्य के लिए खतरनाक है। नजरिया बुरा होने पर आपको सिर्फ कुछ समय के लिए खुशी मिलती है तथा लंबी खुशी के लिए आपको सकारात्मक नजरिया विकसित करना होगा जिससे आप लंबे समय तक खुद को खुश रख सकते हैं और यही खुशी आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में निखार लाएगी।
1: ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि सकारात्मक आपका नजरिया है यानी पॉजिटिव आउटलुक है आपका, तो आप दूसरों को खुश रख सकते हैं और उनकी खुशी में ही आपकी खुशी रहती है। इससे आपका ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है यानी व्यक्तित्व जो विकास रहता है वो उसमें एक अहम कड़ी मिलती है। सीखना बंद तो जीतना बंद, यानी आप पता होगा क्योंकि व्यक्तित्व विकास में ये होना बहुत जरूरी है। आपने सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जी के शो कौन बनेगा करोड़पति को सुना ही होगा आपने। सीखना बंद तो जितना बंद ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि सीखता वही है जिसमें जीतने की उमंग होती है और जिसका दिल जवान होता है। जबकि सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती, सीखना कभी ना खत्म होने की प्रक्रिया है। इसलिए सीखने के दौरान गलतियां ना करें और दूसरों की गलतियों से सीखें और अपनी गलतियों में सुधार करें।
0: इसके साथ साथ लगातार सीखने की अनवरत कला से ही आप नए नए लोगों से मिलते हैं, नई नई जानकारियां हासिल करते हैं और इसी कला से आपका व्यक्तित्व विकास होता है।
1: और आखिरी है, हम आपको बता देना चाहते हैं, ये कार में योग्यता ये भी आपके व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अपनी रुचि एवं योग्यता के अनुसार एक निश्चय विषय या क्षेत्र का चुनाव कर उस पर अग्रित रहें और आगे बढ़ने का पूरा प्रयास करें। जिस विषय को आपने चुना है, सबसे पहले उसमें गहराई तक जाएं, उसके बारे में जितना ज्यादा हो सके ज्ञान प्राप्त करें। इससे हकीकत में यह होगा कि मान लीजिए अगर आपसे किसी ने आपके कार्य से संबंधित कुछ सवाल किए, लेकिन आप उन सवालों का जवाब सही ढंग से नहीं दे पा रहे हैं, तो इससे आपका व्यक्तित्व लो होता है, यानी कमजोर होता है। अतः आप अपने काम में होनहार बनिए। इसके अलावा आपको देश विदेश के बारे में मनोरंजन एवं ज्ञानपूर्ण जानकारी रखना अन्य लोगों के मध्य आपको लोकप्रिय बनाता है।
0: आगे हम बात करेंगे अगर निष्कर्ष की, तो इस बात में हम आपको जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक में आने वाले हर वह खास टिप्स बताते हैं जिससे आप अपनी कमियों को आसानी से दूर कर सकते हैं।
1: यदि आपने अपने जीवन में यह खास टिप्स नियमित आधार से अपनी दिनचर्या में उतार लिए, तो यकीनन आप खास पर्सनालिटी डेवलपमेंट के धनी बन जाएंगे। आशा करते हैं कि आपको यह लेख पर्सनालिटी डेवलपमेंट टिप्स, व्यक्तित्व विकास के टिप्स आपको बेहद पसंद आए होंगे। आने वाले समय में हम आपको और भी व्यक्तित्व विकास से जुड़ी बातचीत हम लेकर आएंगे। साथियों, इसी के साथ हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम हम होंगे कामयाब कार्यक्रम से जाने का। तो आपको ये जानकारी हम जो दे रहे थे व्यक्तित्व विकास के बारे में, जो आपके लिए बहुत जरूरी रहती है जब आप किसी के पास बैठते हैं या इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो व्यक्तित्व विकास होना बहुत जरूरी रहता है हमारे युवा साथियों के लिए।
0: बिल्कुल, तो हमें उम्मीद है कि जो भी टिप्स हमने आप सबको बताए हैं उन पर आप काम करेंगे, यानी कि अपने व्यक्तित्व विकास में उनका उपयोग जरूर आप करेंगे, तो आपके लिए भी अच्छा होगा और हमारे लिए भी बहुत अच्छा होगा। अगर साथियों आप इन सबका उपयोग कर रहे हैं या फिर आपने इस कार्यक्रम को सुनकर थोड़ा सा भी अपने व्यक्तित्व में थोड़ा सा बदलाव किया है, तो हमें जरूर बताइएगा फोन के माध्यम से, या फिर आप इस कार्यक्रम से जुड़े हुए कोई सवाल हमसे करना चाहते हैं तो भी आप हमारे साथ जरूर कार्यक्रम में जुड़ के और सवाल पूछ सकते हैं। तो इसके लिए हमारा नंबर है
1: 9425147126।
0: श्रोताओं, जब कभी ये नंबर अगर ना लगे तो आप व्हाट्सएप पर इसी नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर ये कॉल लग सकता है। और आपको एक और बात बता देना चाहते हैं, हर कार्यक्रम में जो हम बता रहे हैं कि अब अपना रेडियो बुंदेलखंड सिर्फ अपने रेडियो सेट पर ही सीमित नहीं है, अब ये ऐप के माध्यम से हर जगह उपलब्ध हो चुका है। तो हमारे और भी जो श्रोता साथी हैं जिनको रेडियो बुंदेलखंड सुनने में परेशानी होती है, उनको आप इस ऐप की जानकारी जरूर दीजिएगा ताकि वो आसानी से रेडियो बुंदेलखंड को अपने क्षेत्र में सुन सके।
1: तो अब हमारा जाने का समय होता है, आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात।
0: तब तक के लिए नमस्कार।
1: और चलते चलते आप सुनो इस प्यारे से लोकगीत को।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली, नमस्कार। रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाली सभी सखियों को हम यानी कि वर्षा दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं और साथ में हमारी सखियों को बता देना चाहते हैं कि हम उनका पसंदीदा जो कार्यक्रम है हेलो सहेली वो लेकर आ गए हैं। और आप इस समय अपने अपने आसपास की जो भी बहनें हैं उनको भी बिठा लीजिए ताकि उनको भी पता चले कि आपकी आवाज जो है वो रेडियो पर आ रही है, और रेडियो पर आवाज अगर आ रही है आपकी पसंद का गीत भी आएगा। तो बिल्कुल सखियों, आपको बता देना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम में अगर आप शामिल होना चाहती हैं और अपने मनपसंद लोकगीत की फरमाइश करना चाहती हैं तो हमें शुक्रवार के दिन कॉल करें हमारे नंबर 94-25-14-17-26 पर, और कॉल करने के बाद आप अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवा सकती हैं जिसको आप शनिवार को सुन सकती हैं। तो आइए, हमारे साथ कुछ सखियां हैं जिन्होंने अपनी फरमाइश करी है और सुनते हैं उनकी मनपसंद फरमाइश को।
2: हेलो सहेली।
3: हेलो सहेली, नमस्ते दीदी।
2: नमस्ते, को बोल रही?
3: पार्वती वंश का सजनपुरा से।
2: बिल्कुल पार्वती जी, बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। बताओ का क्या बचाती हो?
3: हम देखते हैं दीदी का, हमें एक सुना दो एक गीत।
2: हाँ, कौन सा सुना दे?
3: बिल्कुल, मैं चल जाती हूँ तुम्हारी नगर जाए भाई दीवानी में, बारी हमारी जाए
2: संध्या सागम को है वो।
3: हाँ
2: बिल्कुल, यानी नो हम जरूर सुनवा दें आपको। और बताओ पार्वती जी, प्रोग्राम कैसे लग रहा है रेडियो के?
3: प्रोग्राम बहुत अच्छे लग रहा है दीदी।
2: तो ठीक है पार्वती जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आपको जरूर सुनवा रहे हैं आपकी पसंद को जो लोकगीत। ठीक है
3: दीदी, सुना।

0: सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: का नाम?
1: पान कुआ है।
0: कितने से बोल रही?
1: मस्तापुर से।
0: अच्छा पान कुआ जी, तो मस्तापुर में का हो रहा हो आजकल?
1: आज लोकगीत अपनी पसंद को सुना।
0: ठीक है, तो हम आपको जो सुनवा रहे हैं अपनी पसंद को लोकगीत। ठीक है।
1: हाँ।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: हेलो सहेली,
1: को बोल रही?
0: उमा देवी बोल रहा है मस्ता पैसे।
1: ठीक है तो आज बताओ कौन सा लोग किसने आपको?
0: हमें तू माशाल्लाह तो मत जा।
1: अरे वाह क्या बात है, तू
0: पंचांगे तो और आनो। हाँ वही लोग गीत सुनने में
1: बहुत बढ़िया, तो हम आपको जरूर सुनवाए जो लोग गीत। ठीक है
0: नमस्कार।

सखियों, अभी आप सुन रही थी हमारी सखियों की मनपसंद फरमाइश को। और क्योंकि अब हमारा समय भी हो रहा है आज के इस कार्यक्रम से जाने का, तो हमारी जो सखियां इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाई हैं, अगर वो अगले कार्यक्रम में शामिल होना चाहती हैं, तो हमें जरूर कॉल करें हमारे नंबर 94-25-14-17-26 पर। जी हाँ सखियों, और आपको कॉल करना है शुक्रवार के दिन। तो हेलो सहेली कार्यक्रम से जाने की दीजिए अपनी दोस्त वर्षा को आज्ञा। फिर होगी आपसे मुलाकात अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप इबेरा अपने रेडियो साथी माता दिन भैया के संग में। और दोस्तों, जैसे कार्यक्रम को समय भाव है सो हम लेके आ गए आप सब जन के लाने जो कार्यक्रम छिरिया बाड़ा। जी हाँ दोस्तों, सो साथियों, छिरिया बाड़ा कार्यक्रम में अपन बात करते हैं खेती किसानी के संगे संगे पशुपालन की। सो दोस्तों, आज अपन ई कार्यक्रम में पशुपालन की नस्लन को और पशुअन के पोषण पे उनके आहार पे अपन बातचीत करें। दोस्तों बात करें पशु आहार शब्द, जैसे कि नाम से ही पता चल जात के पशु की बात हो रही है थे। और पशु आहार यानी कि पशुओं की 24 घंटे में दी जाने वाली आहार, ऐसा आहार जो पशुओं को आवश्यक पोषक तत्वों प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट खनिज लवण विटामिन युक्त का उच्च अनुपात और उचित मात्रा में दी जाने वाली आहार, जो पशु की बढ़वार स्वास्थ्य अधिक दुग्ध देने में उत्तम क्षमता बनाए रखें। सो दोस्तों, पशुओं के लाने अपने आहार पे आगे भी बात करें और उनकी नस्ल पे बात करें। सो ये बातन के संगे संगे आप पहला एक बढ़िया से गीत को सुन लेते फिर आगे कार्यक्रम में। जी गीत को गा रहे हैं रामाधीन आर और रेखा राजी।

लाओ मोए कंगना जैसे पेरे देवरानी। देखो कितना बढ़िया जो गीत अपन सब जन ने सुनो है, गीत को आनंद लो है, गीत को गा रहे थे रामाधीन आर और रेखा राज्य। अब दोस्तों अपन चलते हैं अपने कार्यक्रम की ओर। सो दोस्तों आज के समय में पशुपालन एक बहुत अच्छी उभरता हुआ व्यवसाय है। जी हाँ, पशुपालन भी कृषि व्यवसाय की एक शाखा है जिसमें कई प्रकार के पशुओं को उनके दूध व अंडे व अन्य उत्पादों के लिए पाला जाता है। पशुपालन के लिए आपको पशुपालन की जानकारी होना अति आवश्यक है। यहाँ पर आप जानेंगे कुछ टिप्स जिसे आप पशुपालन जैसे कि भैंस मुर्गी भेड़ बकरी पालन आदि अच्छे से कर सकें, अधिक मुनाफा कमा सकें। सो दोस्तों अपन सबसे पहला अपने पशु की नस्ल को ध्यान से चुने। जी हाँ, अगर अपन कोनों से भी पशु पाल रहे तो उनकी सबसे पहला नस्ल को ध्यान में रखें। खास तौर पर भैंस और बकरी पालन के व्यवसाय में जहां आपको पशु का दुग्ध व मांस बेचकर मुनाफा होता है, आपको अपने पशु की नस्ल का चुनाव काफी ध्यान से करना चाहिए। हर नस्ल का पशु अच्छा एवं ज्यादा दूध नहीं दे सकता, इसलिए आप पशु की नस्ल चुनते समय सावधानी बरतें। सो अपने पशु को अच्छे पोषण वाला आहार ही दें। अगर आप भी पशुपालन व्यवसाय से जुड़ने का मन बना रहे हैं तो आपको यह बात समझनी चाहिए कि यदि आप अपने पशु को अच्छा चारा व दाना पानी देते हैं तो उससे न केवल उसकी सेहत अच्छी रहती है बल्कि पशु की उत्पादक क्षमता भी कई गुना बढ़ जाती है। पशुपालन करते समय आप अपने पशु को सही मात्रा में पोषण वाला आहार ही खिलाएं, जिससे आपके पशु का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आपको मुनाफा भी अधिक प्राप्त होगा। अब दोस्तों बात आती है कि अपने पशु का आवास स्वच्छ रखें। अपने पशु का जो आवास है उसे साफ और स्वच्छ रखें। पशु का आवास जितना अधिक स्वच्छ होगा उतना ही आपके पशु को बीमारी का खतरा कम रहता है। पशुओं को नियमित रूप से नहलाएं और उनके आवास के लिए किसी ऊंची जगह का चयन करें जिससे बारिश एवं नालियों का पानी मलमूत्र इत्यादि से वह बाहर रह सके। आपके पशु के आवास में कम से कम 2 से 3 जगह से अच्छी धूप आनी चाहिए। आवास में धूप के आने से न केवल वहां के कीटाणु मरते हैं बल्कि आपके पशु का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। पशु के लिए पानी की सुविधा। पशु आवास में पशु के लिए पानी एवं खाने की उपलब्धता का भी ध्यान रखें। डेयरी के कामों में वैसे भी पानी की काफी जरूरत होती है और खास तौर पर गर्मी के मौसम में आपको पशु के लिए पानी उचित मात्रा में जरूर रखना चाहिए। पशु के स्वास्थ्य का अच्छे से ख्याल रखें। पशुपालन में अपने पशु के स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पशुपालन में सबसे जरूरी बात यह होती है कि आप अपने पशु को सही समय आने पर उसे सभी आवश्यक टीके लगवाएं, उसको लू लगने से बचाएं, चारा पर्याप्त मात्रा में दें ताकि उसका स्वास्थ्य ठीक बना रहे। पशु की नियमित रूप से डॉक्टरों से जांच कराते रहें। अगर आपका पशु कभी बीमार होता है

या आपको वह कुछ सुस्त दिखाई देता है तो तुरंत उसे जानवरों के डॉक्टर को दिखाएं। ऐसा हो सकता है कि उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो। कभी भी जानवर के बीमार होने पर खुद उसका इलाज करने की कोशिश ना करें, यह आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। अपने पशु को अच्छा मुनाफा होने पर ही बेचें। अपने पशु को बेचने के लिए सही समय आने का इंतजार करें। अच्छी नस्ल वाले पशु को सही समय आने पर काफी अच्छे दामों में बेचा जा सकता है। जैसे कि अगर आप बकरी पालन करते हैं तो बकरी ईद के समय पर अपनी बकरी को अच्छे मुनाफे पर भी बेच सकते हैं। पशु उत्पादों में मिलावट ना करें। अगर आप बाजार में पशु का दूध बेचना चाहते हैं तो आपको काफी अच्छा मुनाफा हो सकता है, पर अगर आप अपने पशु उत्पाद में पानी या किसी और चीज की मिलावट करेंगे तो वह आपके व्यवसाय के लिए हानिकारक हो सकता है। पशु उत्पाद में मिलावट करने से आपका मुनाफा तो बढ़ जाता है, लेकिन मिलावट करने पर आपके ग्राहक आपके उत्पाद को नापसंद करने लगते हैं व आपके खिलाफ शिकायत भी हो सकती है। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। अगर आप सघन पशुपालन या आश पशुपालन करना चाहते हैं तो आपको अपने स्वास्थ्य का भी उचित ध्यान रखना पड़ेगा, वरना आप जानवरों से होने वाले रोगों के शिकार बन सकते हैं। टीबी जैसे रोगों से एक उदाहरण है। जानवरों के मल में पैदा होने वाले बैक्टीरिया और उनमें बैठने वाली मक्खियां आपको बहुत बीमार कर सकती हैं। पशुपालन की सरकारी सेवाओं का भी लाभ उठाएं। सरकार की तरफ से कृषि उद्धार के लिए किसान हेल्पलाइन जैसी कई सेवाएं शुरू की गई हैं। आप इन सेवाओं का लाभ अपनी भाषा में मुफ्त उठा सकते हैं। यह सुविधा 24 घंटा सातों दिन चालू रहती है। तो कभी अगर आपको पशुपालन से संबंधित कोई भी परेशानी होती है तो देर किए बिना किसान हेल्पलाइन पर आप कॉल कर सकते हैं। किसान हेल्पलाइन नंबर है 1551 या 1800। सो देखो दोस्तों, जो अपन ने पशुपालन से संबंधित जानकारी जानी है, अब एक क्रम में अपन एक गीत को सुनत और गीत को आनंद ले। सो आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता भैया के संग में। आओ दोस्तों सुनत ही गीत को जी गा रहे हैं राजकुमार त्यागी जी और अमूल अहरवाल।

बिल्कुल दोस्तों, जो 3 दिन आपको मिला रही उड़ जाए हंस अकेला। देखो कितना अच्छा जो गीत अपन सब जन ने सुनो, गीत को आनंद लो। ये गीत खुंगा रहे थे अमूल अहरवाल जी और राजकुमार त्यागी जी। अब दोस्तों आज के कार्यक्रम छिड़कियावाड़ा से आपके दोस्त मातादिन भैया को जाबे को समय हो गए है, सो हमें दो कार्यक्रम से जाबे की अनुमति। अपनी तपनी पर हुई मुलाकात कार्यक्रम में एक बेरा पे, जब तक के लाने नमस्कार।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप इबीरा अपने रेडियो साथी माता दिन के संग में। और दोस्तों, हम लेके आ गए आप सब जनन के लाने जो कार्यक्रम विधा बुंदेली। और दोस्तों, कार्यक्रम विधा बुंदेली में अपन एक विधा को सुनते हैं और विधा को आनंद लेते हैं। सो दोस्तों, आज के अपने कार्यक्रम विधा बुंदेली में अपन सुने विधा श्रृंगार गीत को और श्रृंगार गीतन को आनंद ले हैं। दोस्तों, जो श्रृंगार गीत एक बहुत ही अच्छी विधा है जिमें नारी के श्रृंगार को वर्णन करो जात। सो दोस्तों, आओ हम आप सब जन को सुनाओ थे जो श्रृंगार गीत कौन प्रकार से गाए जाते हैं। सो सबसे पहले गीत सुनाते हैं जी, ये गा रहे हैं रामकुमार प्रजापति जी। सो दोस्तों, आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दिन के संग में।
1: हाँ, तो आप एक श्रृंगार सुना रहे हैं। बुंदेलखंड में जब श्रृंगार करके नायिका निकले थे, देखने में मन ललचात के देखती रहे। और हम जब अपने घर से मतलब श्रीमती खन लुआ के आ रहे थे, जैसे लुआ के आए तो हमारे मित्र मिल गए और उनने पूछी कि तीन चार जने आ रही, उनमें से कौन है तुम्हारी धर्म पत्नी। से हमने कही के मटकते आ रही और लटकते आ रही कमर में कर धोनी। बता भी रहे, नाम नहीं बता सकता, तीन चार जने हैं उमे भी चली आई। सबने कही के मटकते आ रही।

बोले कि ऐसे में नहीं आ रही समझ में, बताओ तुम तो स्पष्ट। हमने कहीं देखो श्रृंगार की बात है कि कनहर जैसी।

मित्र बोले के देखो ऐसे में भी समझ में नहीं आ रहा है, करदोनी दो जनी पे रहे। हमने की नहीं जीने बना दही कर...

बोले के तुम तो जा बताओ, पीली साड़ी बारी यहाँ? हमने की नहीं। बोले नीली साड़ी बारी? बोले नहीं। बोले फिर कौन? हमने की ये। अरे गंजले ठाकुर दई हमई खा, गंजले ठाकुर दई हमई खा।

0: बिल्कुल दोस्तों, मटकत आ रही लटकत आ रही कमर में कर धोनी मोरी बेला कली। देखो दोस्तों, कितनों प्यारो जो गीत अपन सब जन ने सुनो है, जो सिंगार गीत है, और दोस्तों ये गीत को गा रहे थे भैया राम कुमार प्रजापति जी। अब दोस्तों आ सुनते हैं अगले साथियों के गायब है सिंगार गीत को।
1: नई नई दुल्हन सज गई है न, घुंघटा में नैन धोई कजरा रे, गोरे हैं गाल।

बिल्कुल दोस्तों, गोरे हैं गाल दोई होंठ लाल, रेशम से बाल कारे कारे। देखो कितना प्यारा जो श्रृंगार गीत अपन सब जनन ने सुनो है, इस श्रृंगार गीत को आनंद लो है, ई गीत को गा रहे थे रामाधीन आर जी। सो दोस्तों, रामाधीन भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद जो इनने तो अच्छो बढ़िया श्रृंगार गीत गा के अपन सब जन को सुना है। अब एक क्रम में फिर से सुनते हैं अगले साथियों के गाय भाई श्रृंगार गीत को और लेते हैं उनके गीत को आनंद। सो दोस्तों, आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में।

केवल लाल ही लाल सिंगार है, सिंगार बहुत से देखे हैं सुने हैं आपने, जो तो लाल है केवल काय के लाल लाल चोली और चूनर है लाल, लाल लाल चोली और चूनर है लाल, लाल लाल साया पे, लाल लाल साया पे।

बात है के हर पावन हा हर पावन माहौर जो लगो लाल लाल हर पावन माहौर जो लगो लाल लाल और लाल लाल।

तुह लागो है नीको जो लाल बूंदा। देखो कितना प्यारो जो गीत अपन सब जनन ने सुनो है, श्रृंगार गीत को आनंद लो है। इस श्रृंगार गीत को गा रहे थे भैया राम कुमार प्रजापति जी। अब दोस्तों राम कुमार भैया जी के गीत के बाद आप फिर से सुनते हैं अगले साथियों के गाय भाई गीत को।

बिल्कुल दोस्तों, भौजी सजी मूर मोटर सी करसो लो सिंगार मनोरंजन रिभोरा। देखो कितना प्यारा जो गीत अपन सब जन ने सुनो है, इस सिंगार गीत को आनंद लो है। इस सिंगार गीत को गा रहे थे भैया राम सुमन अहरवार जी। सो आओ दोस्तों फिर से सुनते हैं अगले साथियों के गाय भाई गीत को। अरे जा गोरी बुन...

ਦੇਖਤ ਲਈਏ।

0: है, इस श्रृंगार गीत को आनंद लव है। दोस्तों ये गीत को गा रहे थे भैया खूबचंद कुशवाहा जी। आप दोस्तों खूबचंद कुशवाहा जी के गीत के बाद आप फिर से सुनते हैं अगले साथी के गाए भाई गीत को और लेते हैं उनके गीत को आनंद। सो आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में।
1: देखे

देखि कजरवा कारो के गोरी धना जादू सो डारो। देखो कितनो प्यारो जो सिंगार गीत अपन सब जनन ने सुनो है, इको आनंद लो है। अब दोस्तों ये गीत के संगे संगे हम बता देवे कि ये गीत को गा रहे थे भैया राम सुमन अहरवार जी। अब दोस्तों ये कार्यक्रम से अपने दोस्त माता दीन भैया को अब जाबे को समय सो हो रहा है। सो दोस्तों अपने दोस्त माता दीन भैया को ये कार्यक्रम से जाबे की अनुमति अपनी तपनी फिर हुई मुलाकात है कार्यक्रम में ये बेरा पे। अब अपने माता दीन भैया को जाबे की अनुमति। नमस्कार।

गलियों गलियों फिरता हूँ, कब से जब से इस हसीना ने, जब से इस हसीना ने मुझको आँख मारी।

0: अगर ये देवी है तो हम भी पुजारी से कम नहीं है, और पुजारी हुए जब तो अगरबत्ती खोन से देवी के लगा प्रसन्न हुई है देवी काय और काय ना।
1: एक तरफ ये देवी है दूजा मैं पुजारी हूँ।

0: कहना है कि ये चांद तू इतना मत चमक, ये चांद तू इतना मत चमक, मैंने भी कई चांद देखे हैं और तुझ में तो दाग है लेकिन मैंने भी दाग देखे हैं।
1: लेकिन कहना है हसीनों का पीछा हम किया नहीं करते, हसीनों का पीछा हम किया नहीं करते, जज्बात की जिंदगी हम जिया नहीं करते, वो तो तुम हो जनाब, वो तो तुम हो कि तुम्हें मैंने अपना दिल दे दिया, वरना किसी को अपना दिल दिया नहीं करते।
0: तो कहना है आपसे मैडम कि हर शख्स यार नहीं होता, हर शख्स यार नहीं होता, हर दोस्त वफादार नहीं होता, ये तो दो दिलों के मिलने की बात है, वरना सात फेरों में भी प्यार नहीं होता।
1: लेकिन आजकल ऐसे होने लगो, बताए कैसे यारो मोहब्बत मत करना, यारो मोहब्बत मत करना, क्योंकि मोहब्बत में हर चीज पराई होती है। यारो मोहब्बत मत करना, प्यार से प्यार मत करो, जब तक प्यार तुमसे प्यार ना करे, और जब प्यार तुमसे प्यार करे तो जनाब तुम प्यार से इतना प्यार करो, इतना प्यार करो कि प्यार किसी और प्यार से प्यार ना करे।
0: जवाब सत्य ले कहना है हमने इतना प्यार करो, मालूम कितना
1: कितना

di cavalli.

कृष्ण भगवान हनुमान ने आई थी, तो भगवान ने क्या उसके आंचल से जहर लगे तो जहर पिलाने के लिए कि मर जाए भगवान। तो कब बोले

बहुत दिनन से लगन लगी थी मिलवे चेल तुम्हारी, अरे बहुत दिनन से लगन लगी थी मिलवे चेल तुम्हारी।

पानी को रखो संभाल जो चाहो जिंदगानी में। कैसे रखें पानी को, कहाँ रखें, क्या उपयोग करें, सुने आप।

0: देखें आप,
1: हो हाथ में ले तो बीमारी फैले अनेकन अनेक।
0: अगर हाथ गंदे होंगे बीमारी फैलेगी, पानी में जाएगी गंदगी जाएगी। सुने आप,
1: हो हाथ में ले तो बीमारी फैले अनेकन अनेक। हो तन मन की हानि हो भारी हैरानी, हो तन मन की हानि हो भारी हैरानी। हो कर लो विवेक, कर लो विवेक, हाँ कर लो विवेक।
0: और

आखिर में कहे नाथ काशी सुनो हिंदवासी मई या जून। अगर किसी को देना है उपहार में तो ऐसी बात दे दो जिसमें समझ में आए। कहे नाथ काशी सुनो हिंदवासी मई।

0: संसार।
1: और कहने लगी कि अगर मैं होती तो आपके इस आंगन को शोभायमान बढ़ाती, बच्चा आपके आंगन में किलकारियां देता और अपने भाई को राखी बांधती और कहती, राखी बांधती अपने भाई की कलाई को सुशोभित करती और कहने लगी।

नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पर आ गई है आप सबकी दोस्त वर्षा लेकर आपके लिए एक नया कार्यक्रम जिसका नाम है गली गली सिम सिम, जो है आपके लिए खास। जैसे

आसमान का सितारा धरती पे उतारा, फिर उसने आकर खोला अपना जादू का पिटारा, जिसमें है ढेर सारी जानकारी और मस्ती। तो सुनते हैं लेकर चटकारा, गली गली सिम

0: यार बड़ी भूख लगी है, जरा देखो तो आज क्या है किचन में। ये क्या, फिर से वही गोभी और वही आलू। भाई आलू गोभी खा खा के मेरे दांत भी थक गए हैं। कुछ नया भी तो होना चाहिए, रोज रोज कुछ नया नहीं खाऊंगा तो मुँह का स्वाद कैसे बदलेगा। अरे हाँ, खाने से याद आया, आज ना गली में एक नाटक होने जा रहा है जिसमें अपना गुगली बना है राजा और चमकी बनी है मंत्री। और लू जी, नाटक शुरू होने जा रहा है, जल्दी जल्दी सब अपनी जगह पर बैठ जाओ। आज महाराज गुगली के दरबार में एक नए मंत्री आए हैं।
1: महाराज गुगली की जय।
2: हमें भूख लगी है, हमारे नए मंत्री के स्वागत में पूरे दरबार को खास शाही पकवान परोसा जाए।
1: पेश है शाही पकवान।
2: मेरा मन पसंद शाही पकवान।
3: फिर वही शाही पकवान, रोज रोज शाही पकवान, बोर हुए हम खाते खाते रोज यही शाही पकवान।
4: कुछ करिए मंत्री चंकी।
5: क्या हर रोज यही पकवान बनता है? लगता है शाही रसोइये से बात करनी पड़ेगी। नमस्ते शाही रसोइये।
6: अरे मंत्री चमकी, आप
5: बताओ रसोइये, कल दरबार के लिए खाने में क्या बनाओगे?
6: शाही पकवान, और क्या, रोज वही बनाओ वही खाओ। मैं तो शाही पकवान से बोर हो गया हूँ, मुझे सपने आते हैं नई नई सब्जियों के, भिंडी के, गाजर के, रसीले लाल टमाटर के।
5: लेकिन तुम हर दिन कुछ नया क्यों नहीं बनाते?
6: मंत्री चमकी जी, हमारे महाराज गुगली रोज शाही पकवान ही खाते हैं और साथ में हमें भी खिलाते हैं।
5: अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा।
0: वैसे बात तो सही है, अगर कोई नया नया खाना ट्राई नहीं करेगा तो उसकी सेहत कैसे बनेगी। मुझे ही देख लो, लंबा चौड़ा तगड़ा हूँ, बिल्कुल सलमान की तरह। और फिर अगले दिन दरबार में
3: महाराज गुगली की जय।
2: हमें भूख लगी है, शाही पकवान लाओ।
6: ये लीजिए महाराज।
2: अरे वाह, आज तो हमारे शाही पकवान से कुछ ज्यादा ही अच्छी खुशबू आ रही है। लाओ मेरे पास लाओ शाही रसोइये।
6: जी महाराज।
2: ये मेरा शाही पकवान नहीं है, तुमने नया पकवान बनाया।
6: जी महाराज।
2: तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
5: गुस्सा मत कीजिए महाराज, आप टेस्ट तो करके देखिए।
3: महाराज ने चम्मच को उठाया, पूरे दरबार में सन्नाटा छाया।
2: भाई वाह,
4: महाराज को नया पकवान पसंद आया।
2: मैं करता हूँ ये ऐलान, अब राज्य में रोज बनेंगे तरह तरह के पकवान।
3: महाराज गुगली की जय हो, मंत्री चमकी की जय हो।
0: ओए बल्ले बल्ले, गुगली महाराज खुश और राज्य के सब लोग भी खुश। रोज नया खाओ, पौष्टिक खाओ और अपनी सेहत बनाओ। सब लोग इतने खुश थे कि उन्होंने तो गाना ही सुना दिया। लो जी।

0: मजा आ गया। अब सब बच्चों की मम्मी और डैडी को मैं एक राज की बात बताता हूँ। अगर कभी आपके चुन्नू मुन्नू बोलू मोलू नई नई चीजें खाने से मना कर दे तो मैं आपको एक तरकीब बताऊं। कोई बात नहीं, थैंक यू, बाद में बोल लेना। तो सुनिए, आप सब अपने बच्चों के साथ मिलकर खाना बनाएं और फिर देखिए कि उन्हें अलग अलग चीजें खिलाना आसान हो जाएगा। जैसे कि मेरी दोस्त पल्लवी और उसकी मम्मी मिलकर कुछ बना रहे हैं।
1: सब्जियों और फलों में मुझे सबसे ज्यादा पसंद है आम। आम फलों का राजा है। मेरा नाम पल्लवी। सबसे अच्छे आम गर्मियों में ही मिलते हैं। आम किसी भी तरह खाया जा सकता है। और आज मैं, मम्मी और शिरीन मिलकर स्वादिष्ट भेलपूरी बनाएंगे। ये बनेगी खट्टी मीठी अम्बी से, मतलब कच्चा आम। गर्मी में ये चटपटी भेलपूरी कितनी ताजगी भरी होती है। अब हम भेलपूरी में कुछ सब्जियां और मसाले डालेंगे। तीखा प्याज, लाल लाल टमाटर, हरा धनिया, मिर्च। बड़ा मजा आ रहा है। भेलपूरी में हम मुरमुरे जरूर डालते हैं और फिर मिला देते हैं सभी सामान। बन गई चटपटी भेलपूरी। अब आएगा मजा। हम सब साथ मिलकर खाएंगे चटपटी भेलपूरी।
0: देखा कितने बढ़िया तरीके से पल्लवी और उसकी मम्मी ने साथ में भेलपूरी बनाई। भाई वाह, अब मैं तैयार हूँ चमकी और गुगली के साथ एक गेम खेलने के लिए। चलो चलकर देखते हैं ये दोनों क्या खेल रहे हैं।
2: गुगली, मैं तुमसे एक पहेली पूछूंगी और एक आवाज भी सुनाऊंगी। तुम्हें आवाज सुनकर उस खाने की चीज का नाम बताना है। तो तैयार?
3: तैयार।
2: तो सुनो पहेली। उगती है जमीन के नीचे लंबी पतली सब्जी लाल, इसको अगर दांत से काटो तो आती है ये आवाज। बताओ गोगी, मैं कौन सी सब्जी के बारे में बात कर रही हूँ?
3: उगती है जमीन के नीचे लंबी पतली सब्जी लाल।
2: हाँ, एक बार फिर से आवाज सुन लो।
3: लाल सब्जी जिसको खाने से ऐसी करारी आवाज आती है। समझ गया, ये है गाजर।
2: बिल्कुल सही, गाजर, जिसको इंग्लिश में कैरेट भी कहते हैं। गुगी गुगी, ये तो बहुत मजेदार गेम है। चलो अब हम ये गेम अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं। क्यों, खेलोगे ना तुम मेरे साथ?
3: तो हो जाओ तैयार। चलो चमकी, पहला सवाल तुम पूछो।
2: ठीक है, सुनो दोस्तों। रंग में मैं सफेद हूँ, पीने की चीज हूँ, रोज पिया मुझे तो बनोगे तंदुरुस्त और बलवान। आवाज सुनो और बताओ क्या है मेरा नाम।
3: रुको रुको, सोचने दो। रंग में मैं सफेद हूँ, पीने की चीज हूँ, रोज पिया मुझे तो बनोगे तंदुरुस्त।

0: और बलवान। आ गया समझ। चमकी मैं बताऊं?
1: अरे गुगी अभी रुको, बाकी सबको सोचने का मौका दे दो। क्यों दोस्तों, क्या तुम्हें पता चला? एक बार फिर से सुनोगे आवाज?
0: चमकी अब तो जवाब बताने दो।
1: अच्छा अच्छा बताओ, क्या है जवाब?
0: दूध, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं मिल्क।
1: एकदम सही, क्या तुमने भी दूध कहा? बहुत बढ़िया,
0: मजा आया ना। अब यार ये बताओ, इसको छिलो तो कोई आवाज नहीं आती, इसको खाओ तो भी कोई आवाज नहीं आती, पर इसके छिलके पे जब कोई फिसलता है तो बड़ी जोर की आवाज आती है। है जी, क्या बोला? केला यानी बनाना। ओए सही जवाब। ओ यार, आज खाने के बारे में कितना कुछ सीखा हम सबने। हर तरह का खाना खाओ और सेहत बनाओ। अब वक्त है मिलने का हमारी प्यारी नटखट चुलबुली चमकी से। सुनते हैं कि आज चमकी कौन सी मजेदार बातें कर रही है अपने दोस्तों से।
1: कल हमारी गली में पिकनिक थी, सब लोग अपने घर से अलग अलग चीजें बना के लाए थे। पता है बुम्बा ने बोला ये सब पौष्टिक खाना है, मगर सब इतनी ढेर सारी सब्जियां क्यों खाते हैं? मैं बात में पूछती हूँ। हाय, मेरा नाम है चमकी और आप?
2: अब्दुल रहमान।
1: अब्दुल रहमान जी, पौष्टिक खाना क्या होता है?
2: जैसा कि नाम से ही मालूम है कि पौष्टिक खाना बच्चों को देने से उनकी हड्डियों में मजबूती पैदा होती है, उनका दिमाग बहुत अच्छी तरह काम करता है, उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाता है, उनका पढ़ाई में रुचि होती है, खेलने में भी रुचि होती है। पौष्टिक खाना जीवन में तरक्की करने के लिए निहायत जरूरी है।
1: ओ, और आपके गांव में कौन कौन सी पौष्टिक सब्जियां होती हैं?
2: पालक है, टिंडा है और बहुत सारी सब्जियां जैसे लौकी है।
1: मुझे भी पौष्टिक खाना खाना चाहिए ताकि मैं और स्ट्रांग बन जाऊं, मगर मुझे ना कुछ कुछ हरी सब्जियां बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्या करूं? हाँ, गुड़गांव में अपनी दोस्त से पूछती हूँ।
3: मेरा नाम शांति है।
1: शांति, सुमित और उसके भाई बहनों को कौन सी सब्जी अच्छी नहीं लगती?
3: वो तो बस आलू की ही सब्जी पसंद करती है और कुछ भी नहीं खाना चाहती है।
1: हाँ, सिर्फ आलू? हाँ, फिर शांति तुम उन्हें कैसे खिलाती हो?
3: उन्हें कहती हूँ कि बेटे खा लो, थोड़ा भी खाना चाहिए, ताकत की चीज है हरी सब्जी खाने से, मगर खाती नहीं है उन लोग।
1: अरे मेरे गुड़गांव के दोस्तों कोई भी सब्जी नहीं खाते। बुंदेलखंड में पूछती हूँ। हाय, आपका नाम क्या है?
4: हमारा नाम है लक्ष्मी बाई।
1: आप अपने घर पे कौन कौन से पौष्टिक खाना बनाते हो?
4: दाल बनती, चावल बनते, पालक की भाजी बनती, मूली का साग बनता, सरसों का साग बनता, मेथी का बनता, चनों का भी बनता, सब बना के ये बच्चों को देती है।
1: अरे वाह, बुंदेलखंड में मेरे दोस्तों सारी पौष्टिक सब्जियाँ खाते हैं। एक और दोस्त से भी पूछती हूँ। हाय वैष्णवी, ऐसी कौन सी सब्जी है जो तुम्हें अच्छी नहीं लगती?
5: पालक।
1: ओ, फिर तुम पालक कैसे खाती हो?
5: जब मम्मी अपने हाथ से खिलाती है।
1: हाँ, मुझे भी तो बहुत अच्छा लगता है। शारदा, आप वैष्णवी को पालक और पौष्टिक सब्जियाँ कैसे खिलाती है?
6: मैं वैष्णवी को पालक कहानियाँ सुना के खिलाती हूँ।
1: ये अच्छा तरीका है, मैं भी कहानी सुनकर सारी सब्जियाँ खाऊंगी। मुझे तो भूख लग रही है। चलो सुने कि पौष्टिक सब्जियों को और स्वादिष्ट कैसे बना सकते हैं।
4: मैं करेला बनाती हूँ तो उसको छील के और अपने कढ़ाई में रख देती हूँ। तेल डालूं 2 चम्मच, फ्राई करी लाल हो गए इनको निकाल के रख देती हूँ। फिर 1 चम्मच दालचीनी, जीरा का को गरम मसाला और अजवाइन है, मेथी है, सब हम लोग पीस के उसको मसाला अच्छा बना के उसको फ्राई करके बच्चों को फिर खिलाते हैं।
1: अब मैं सब कुछ खाऊंगी, तुम भी सब सब्जियां खाना। ठीक है दोस्तों, ओके बाय
0: बाय। मजा आया ना

0: तो दोस्तों मजा आया ना आज का हमारा जो एपिसोड था यानी के गुगली महाराजा। वही बात, क्या बात है, गुगली महाराजा की तो बात ही अलग है। और फिर हमारे कार्यक्रम में जो कितनी अच्छी अच्छी बातें करी गई हैं, भाई हरी सब्जी क्या होती है, हरी सब्जी हरी सब्जी, मुझे तो उसका कलर ही बहुत अच्छा लगता है। आपको पता है कि हरी सब्जी का जो रंग होता है यानी कि ग्रीन, और ग्रीन रंग तो सभी को पसंद होता है, जैसे तो इस पर पेड़े भी कितने हरे हरे हैं, तो वो हमें कितने सुंदर लगते हैं। और जब पेड़े सुंदर लगते हैं तो उसी तरह सब्जियां भी सुंदर लगती हैं, और जब सुंदर सुंदर चीजें हम खाएंगे तो हम सुंदर सुंदर बन जाएंगे। अब इस बात पर हमारे साथ में मौजूद है पजनपुरा की गीता जी, तो आइए वो क्या कहती है इस बारे में।
1: नमस्कार, मेरा नाम वर्षा है, आपका नाम क्या है?
2: नमस्कार, मेरा नाम गीता है
1: जी। तो गीता जी, जैसे कि अभी देख रहे हैं कि हरी सब्जियों के बारे में बहुत झगड़ा होता है कि बच्चे हरी सब्जियां नहीं खाते हैं, तो क्या कारण हो सकता है कि बच्चे हरी सब्जियां क्यों नहीं खाते हैं?
2: उनका कारण एक ही है कि वो हरी सब्जी पसंद नहीं करते, इसीलिए उनको अलग तरीके से हम खिला सकते हैं बच्चों, क्योंकि हरी सब्जी यहाँ तक कि बड़े भी नहीं खाते।
1: तो इनका मतलब हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि कोई ऐसा उपाय है जिस तरीके से हम उनको हरी सब्जियां खिला सकते हैं?
2: हाँ, ऐसा दूसरा तरीका भी है, जैसे कि हम हरी सब्जी है जैसे लौकी है, तो उसका हम कोफ्ता बना दें तो बच्चे पसंद कर लेंगे खाने के लिए। और दूसरी तरह जैसे पालक है, तो पालक भी नहीं खाते तो उनको मतलब पालक पनीर जैसा पनीर मिला के बनाए तो वो पसंद कर लेंगे, कि आलू में बनाए तो पसंद कर लेंगे। ज्यादातर बच्चे आलू ही पसंद करते हैं, इसलिए आलू में हम मिक्स करके बना सकते हैं, या पालक पनीर ही बनती है ना, तो वो वैसा ही बना सकते हैं, तो बच्चे पसंद कर लेते हैं।
1: अच्छा, और क्या क्या वजह है जिनसे बच्चे नहीं खाते हैं, मतलब बच्चों को खाने में अक्सर क्या पसंद होता है?
2: बच्चों को खाने में अक्सर पसंद होता है कि उनको चटपटी सब्जी मिले, और हरी सब्जी तो वो बिल्कुल पसंद ही नहीं करते, जैसे कि आलू हुए, छोले हुए, और दाल, मतलब ये दाल चावल तो वो खाते ही हैं, और बल्कि हरी सब्जी बहुत ही कम खाते, इसलिए हमें अलग तरीके से उनको बना के हरी सब्जी, क्योंकि पौष्टिक होती है तो उनको आहार मिलना चाहिए, तो इसलिए हमें दूसरे तरीके से बना के उनको खिलाना चाहिए।
1: जी, आपने बताया जैसे कि हरी सब्जी पौष्टिक होती है, तो किस तरह से हमारे शरीर को फायदा करती है, इसके बारे में थोड़ा बताएं।
2: हमारे शरीर को जो हरी सब्जियों से विटामिन मिलती है तो फायदा ही तो होता है कि हरी सब्जियां ना खाएं, तो कि अगर हम बच्चों को खिलाएं ना तो मतलब पौष्टिक के आहार कम ही हो सकती है, जैसे कि बड़े हों या छोटे बच्चे हों, तो हमें ज्यादा जरूरी है कि उनको हरी सब्जी खिलाना चाहिए, क्योंकि उनको आहार मिले, पौष्टिक आहार मिले। और इसके अलावा की तो मतलब हमें नुकसान भी बता सकते हैं, इसलिए हमें हरी सब्जियां देख के खानी चाहिए।
1: धन्यवाद
2: धन्यवाद।

बन गई सरपंचन, गुरुआ की गली गली में बरसा दो कंचन, गुरुआ की गली गली में बरसा दो कंचन।

0: श्रोताओं नमस्कार। रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनई बेवारे हमारे सब साथियों को बहुत ही बहुत स्वागत हम करा देंगे। हम तो हैंगे भैया आपके संगे आपकी रेडियो दोस्त वर्षा, लेके हाजिर हैं आप सबके लाने कार्यक्रम हमारी संस्कृति हमारी विरासत। जी हाँ श्रोताओं, हमारी संस्कृति और हमारी विरासत ये दो ही चीजें अपने तय की बहुत ही ज्यादा मशहूर रहती हैंगी। और आप सब जने जानते हैं कि बुंदेलखंड की चर्चा हर जगह होतेगी, जब खूबसूरती की बात करी जाए या फिर विरासत की बात करी जाए या धरोहर की बात करी जाए। और ऐसे ही में अपन और क्या कर रहे थे इस कार्यक्रम के माध्यम से, जो अपने साथी केवल जिनने नाम सुनो है गो कि अरे फलानी जगह ऐसी जगह हैगी और उतने हमें जाने हैं गो और उतने के बारे में उन्हें कछु पतो नहीं है, तो अपन और कोशिश कर रहे थे कि इस कार्यक्रम के माध्यम से जो है उन्हें उस जगह को घुमा देवे। एक कथ है ना कि अपन सुन के भी सुन के और आंखें बंद करके अपन समझत के उस जगह पे पहुंच गए, और विस्तार से अगर कोई बता रहा हो उसके बारे में तो है कि नहीं। सो अपन ई कार्यक्रम से आज आपको ले चला देंगे चंदेरी। जी हाँ साथियों, आपने चंदेरी की साड़ियां तो बहुत सुनी हुई है, लेकिन चंदेरी को ऐतिहासिक का रहस्य है गो उके बारे में भी अपन और ई कार्यक्रम के माध्यम से जाना थेंगे। तो आप देर नहीं करे थेंगे, हम आपको ले चले थे सीधे चंदेरी, काहे के पहुंचवे में तना टाइम भी लगे होते हैं। ठीक है, तो चलो अपन सैर करवे चले थेंगे और संस्कृति के बारे में जाना थेंगे चंदेरी की, और जी के बारे में विशेष पूरी जानकारी दे रहेंगे अपने रेडियो साथी जगरूप जी।
1: वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार, धरती माँ की यही पुकार।

शैतान के सब तुलसी भये महान। संत कभी दुनियन की खान, तान से निकली गूंजे तान के सब तुलसी।

0: पेड़ पौधों से करोगे प्यार तो रहेगा जीवन खुशहाल। वृक्षों को कटने से बचाओ, वृक्ष ही जीवन है। वृक्ष लगाइए, जीवन बचाओ।
1: वीर सिंह यादव के स्वर में अभी हमने ये लोक गीत सुना, अपनो प्यारो बुंदेलखंड, भारत माता को हृदय है। बिल्कुल मित्रों, ये गीत भी बिल्कुल बयां करता है हमारे इस बुंदेलखंड को। हमारा बुंदेलखंड, हमारा ये जो प्रदेश है, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, तो हमारे भारत देश का एक मध्य स्थल है, हृदय क्षेत्र है। तो अब हम आगे बढ़ें और चलते हैं हृदय स्थली की एक ऐसी जगह पर जहां बहुत ही लोक लुभावन संस्कृति से परिपूर्ण और प्राकृतिक सौंदर्य निहारते ही बनता है। हम बात कर रहे हैं वही चंदेरी की, तो चलते हैं चंदेरी। श्रोताओ, आज हम आपको ले चलते हैं अपने बुंदेलखंड की, हालांकि ऐतिहासिक जो जानकारी आप सभी को हम अब तक पहुंचाते रहे हैं। आज प्रातः काल का वक्त है और चंदेरी जो कि ऐतिहासिक नगरी है, अपने आप में एक रमणीक जगह है जो कि देखने लायक ही है। और आज हम बस्ती से जब आए यहाँ, जागेश्वरी देवी माँ का प्रसिद्ध मंदिर है जो कि पहाड़ पर बना हुआ है, और यहाँ पहाड़ से हम देख रहे हैं, सीढ़ियां चढ़ते हुए आ गए हैं ऊपर, जो यहाँ की नगरी को देख रहे हैं तो देखते ही बन रही है। और हम चलते हैं जागेश्वरी मंदिर, माता रानी के दरबार में। हमारे साथ हमारे साथी भी हैं मोहन वर्मा जी, जो कि हमारे साथ ओरछा से ही आए हैं अपनी गाड़ी से। अब हम अंदर प्रवेश करते हैं मंदिर में, और अब हम मंदिर प्रांगण में आ गए हैं तो सामने ठीक खड़े हैं जहां पर शिव जी का स्थान बना हुआ है प्राचीन, और हनुमान जी महाराज की भी प्रतिमा है बगल में। देखते हैं कि यहाँ पर प्रभा देवी और काफी जो चरण सेवक हैं उन्होंने कुछ व्यवस्थाएं कर रखी हैं। काफी बड़ा जो आयताकार जगह में ये स्थापित मंदिर, जगह जगह पहाड़ों को तराश करके कुछ मूर्तियां भी स्थापित की गई हैं। और श्रोताओं, हम आपको बता दें कि माँ जागेश्वरी देवी के मंदिर में हैं हम, जो पुजारी हैं उनसे हम थोड़ी सी जानकारी करते हैं, माता रानी के चर्चा करते हैं माता रानी जी के विषय में। आप अपने बारे में बताएं, आपका शुभ नाम।
2: हमारा नाम मनोज कुमार चौबे है, उपनाम जुग्गे महाराज है। यहाँ हमारे पूर्वज सन 1631 से हैं, और वहाँ पूर्वजों द्वारा जो ज्ञात है, यहाँ पे उस समय झांसी स्टेट रहा है, यहाँ

0: काशी स्टेट था, फिर ग्वालियर हुआ। यहाँ ये बिंद मेखलाओं के बीच माँ जागेश्वरी माँ विराजी हुई हैं, जो हिंदुस्तान के 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। यह शक्तिपीठ हिंदुस्तान के जो 52 शक्तिपीठ है, माँ सती के अंग हैं। 52 अंग जो भगवान शिव की भार्या के इस मृत्यु लोक में अवतरित हुए हैं, उनमें से यहाँ माँ का मुख है। उसके साथ एक किंवदंती जुड़ी हुई है। उस किंवदंती में बताया जाता है कि राजा कुरुम देव हुए हैं, कुरुम शासक, और उनके समय में यहाँ प्राकट रूप है। उसकी खोज बंसीधर चौबे नाम के पंडा जी हुआ करते थे, जिन्होंने की। फिर उनको ये तीर्थ दान स्वरूप दे दिया गया था। इसके बाद यहाँ पर जो शिवलिंग है, 2251 शिवलिंगों के साथ शिव शक्ति का संगम केंद्र है। वाणी से प्रमाणित नहीं होगा, यहाँ एक प्रतिमा है भगवान शिव की और पार्वती की, जो बाहें हाथ में डाले हुए हैं एक दूसरे के, तो ये शिव शक्ति का संगम केंद्र वह प्रतिमा प्रमाणित करती है। यहाँ 7 झरने हैं, 7 झरनों का स्वाद भिन्न है। इस तीर्थ में आए हुए श्रद्धालुओं के लिए संतान प्राप्ति का अद्वितीय केंद्र है। माँ कन्या के रूप में दर्शन दिए हैं राजा को, और राजा को स्वप्न में प्रकाशित किया था कि माँ जागेश्वरी मैं प्रकट होना चाहती हूँ, तुझे मंदिर का निर्माण करवा। मंदिर का निर्माण करवा के पूर्वाभिमुख, और उसके पट 9 दिन तक नहीं खोलना है। राजा अविश्वासी हुआ करते हैं, उनके चाटुकार इतने हुआ करते हैं कि विश्वास करना सहज नहीं होता, क्योंकि कौन सत्य बोल रहा है कौन असत्य बोल रहा है। तो राजा ने मंदिर का निर्माण तो करवाया, लेकिन पट 9 दिन की बजाय 3 दिन में खोल दिए, तो माँ का मुख निकला हुआ है।
1: अच्छा,
0: माँ के मुख के ही दर्शन होते हैं, और ये संतान प्राप्ति का अद्वितीय केंद्र है। यहाँ के झरनों के जल का पीछे जो कुंड बना हुआ है, बताते हैं कि ये रोगों को दूर करता है। यहाँ आने पर स्वयं प्रमाणित होता है कि ये भौगोलिक परिस्थिति से तपस्थली रही है।
1: बिल्कुल,
0: और ये तपस्थली स्वतः प्रमाणित करती है, जब जीवधारी यहाँ कोई भी आता है तो उसे यहाँ आने पर अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। और इस तीर्थ में शिव शक्ति के संगम केंद्र पर यहाँ भगवान शिव की विशेष आराधना की जाती है। श्रावण मास में 2251 शिवलिंगों का एक साथ अभिषेक किया जाता है, और माँ का भी अभिषेक होता है। नवरात्रि में यहाँ पर काफी रस रहता है। कुमार की नवरात्र में यहाँ मेला नहीं भरता, लेकिन चैत्र की नवरात्रि में यहाँ मेला भरता है, और दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, चुनरी लाते हैं। जैसे लोगों की कावड़ यात्रा होती है, यहाँ पर चुनरी यात्रा होती है। जगह जगह से लोग चुनरी लाते हैं, अपनी आस्था को यहाँ माँ के पास प्रकट करते हैं। माँ के प्राकृतिक नेत्र हैं, जीवधारी जब सामने खड़ा होता है तो माँ स्वयं देखती हैं। यहाँ सामने खड़ा सन्मुख हो ही जीव मोहि जबही और जन्म कोटि अघनासे हूँ तबही। 11 वर्ष से यहाँ रामायण चला रहा हूँ, जो निरंतर गति में है, और ये तपस्थली, भजन स्थली, तंत्र स्थली, सिद्ध स्थली और शक्तिपीठ है। इतने प्रकरणों के समाहित है ये। यहाँ पर दत्तात्रेय की प्रतिमा है, जहाँ अनुसुईया जी ने कमंडल से जल छिड़क करके उनकी सतीत्व को नष्ट करने के लिए, जब तीनों देवताओं को भेजा गया था ब्रह्मा विष्णु महेश को, तब उनको बाल स्वरूप बना दिया गया था। बाल स्वरूप प्रतिमा भी यहाँ है, और यहाँ पर 2251 शिवलिंगों के साथ दत्तक गणेश भी हैं, दक्षिणावर्ती गणेश। यहाँ जितने गणपति हैं वो सब दक्षिणावर्ती हैं, और यहाँ भक्तों श्रद्धालुओं के लिए अद्वितीय शांति प्राप्त की जाती है। यहाँ पर भिखारी नहीं है, कोई भी भिखारी यहाँ नहीं मिलेगा। और यहाँ पर शुरू से ये नियम है कि अंदर जो पुजारी भी अटते हैं, जो अन्य तीर्थों में कल्चर है कि भक्त आया नहीं कि पुजारी अटे, यहाँ पर इस तरीके का कोई स्वरूप नहीं है। यहाँ आने के बाद भक्त स्वतंत्र है, वो अपनी आराधना अपने हिसाब से कर सकता है, उसको कोई ना भिखारी छेड़ेगा ना पुजारी छेड़ेगा। यह विशेष पवित्रता इस तीर्थ की हमेशा से है और रहेगी।
1: आप और जो भक्त आते हैं, पर्यटक आते हैं, तो उनसे आप क्या अपेक्षा रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं उनको यहाँ के स्थल के बारे में, कि जैसे देखते हैं कि कभी क्षतिग्रस्त भी कर देते हैं या साफ सफाई को लेके उदासीन रहते हैं कई।

0: तरह से आप कुछ कहना चाहेंगे?
1: यहाँ आने वाले भक्तों श्रद्धालुओं को समझाते हैं और साफ सफाई यहाँ हम स्वयं करते हैं, पुताई स्वयं करते हैं, रखरखाव स्वयं रखते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई सहयोग प्रशासनिक या नेताओं से नहीं है। और यहाँ पर 11 वर्ष से रामायण चल रही थी, उस रामायण को यहाँ के नेताओं ने और कर्मचारियों ने

0: और पर्यटक पर्यटक आते हैं, पर्यटकों के लिए कोई शिकायत नहीं रहती, पर्यटकों का लगा भव्य स्वागत किया जाता है। बाहर से विदेशी जो पधारते हैं उनको विशेष तरीके से स्वागत किया जाता है और उनको आदर सम्मान दिया जाता है। जो भी बाहर से पर्यटक आते हैं वे यहाँ प्रफुल्लता से बाहर जाने के बाद यहाँ की तारीफ करते हैं।
1: जो हमारे देश की, हमारे भारत माता की शान और एक आदर्श है कि अतिथि देवो भव, तो उसका आप साकार करते हैं।
0: यहाँ अतिथि देवो भव को साकार करना हमारा कर्तव्य और दायित्व बनता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े और अपनी बातचीत की हमारे साथियों के लिए, आपको पुनः नमस्कार, धन्यवाद। और मित्रों, यहाँ पे काफी दर्शनार्थी भी हैं, तो हम उनसे बात करते हैं। आप अपने बारे में, आपका शुभ नाम क्या है दादाजी?
2: हमारा नाम रामेश्वर प्रसाद याग्निक, रिटायर शिक्षक। हमने 40 साल मास्टरी करी, 20 साल मिडिल स्कूल, 20 साल हायर सेकेंडरी स्कूल, 1 साल जावरा रहे।
1: तो आप उन्हें तय किए हो?
2: यही किए।
1: अच्छा, तब तो आपन कैसो महसूस करते यहाँ जन्म लेखे ऐसी अच्छी तपोस्थली में, क्या कहे चाह रहे यहाँ के बारे में?
2: हम जो है देवी जी की बहुत अनुकंपा है हम पे। हम बचपन से आ रहे हैं, 5 वर्ष की आयु से आ रहे हैं, देवी जी के उनकी कृपा से हमारा सब भंडार भरपूर है और हम जो है उन्हीं के आशीर्वाद से फल फूल रहे हैं। हमें किसी का ना देना है ना लेना है, बस माँ का दर्शन हो जाते हैं, दिन भर चैन से घटता है।
1: आप शिक्षक हैं और हमारे जो युवा साथी हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं?
2: बस सब खूब धर्म के प्रति आस्था बनाए रखें, धर्म में आस्था बनाए रखें। और हमारे पंडा जी ने अखंड रामायण चल रही है, राम भद्राचार्य जी महाराज ने चालू करी है। यहाँ पंडा जी को बहुत मेहनत करते हैं, सबको खाना खिला रहे हैं, सबको चाय पानी ना, सबको।
1: रामचंद्र जी का मंदिर है।
2: हाँ, वो अच्छा। खंगारों का है। हाँ। और वो जो है किराए पे ऊपर 2 मंजिल है, नीचे बहुत बढ़िया मंदिर है, हनुमान जी की मूर्ति है, बहुत सुंदर मूर्तियाँ उसमें रामचंद्र जी बोले हम देखे, और बहुत बड़ा है मंदिर।
1: अच्छा।
2: हाँ, उसकी व्यवस्था जो है पता नहीं कौन कर रहा है, लेकिन ये एक बहुत अच्छी जगह है।
1: अच्छा है।
2: हाँ, बहुत बढ़िया है।
3: तो साथियों, अभी हमने चंदेरी में जागेश्वरी मंदिर की ये विशेषता और वहाँ की बातचीत सुनी जुग्गे महाराज से, और अब वक्त हो चला है एक और गीत का। सुनते हैं एक और लोक गीत धनकुंवर की आवाज में।

साथियों, अभी हमने धन कुंवर के स्वर में ये बुंदेलखंड पर आधारित लोकगीत भी सुन लिया और अब वक्त हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से आप सभी से विदा लेने का। और मित्रों, विदा तो लेना ही है, आपकी अब वारी है, नंबर है आपका कि आप हमें फोन लगाकर बताएं कि ये जो कार्यक्रम है, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, आप सभी को कैसा लगता है कार्यक्रम। मित्रों, अगर आपकी चिट्ठी या फोन आ जाते हैं तो हमें बहुत ही खुशी मिलती है कि चलिए हम जो कार्यक्रम आप तक पहुंचा रहे हैं वो आपको बेहद पसंद भी आ रहा है। तो आप हमें अपनी प्रतिक्रिया, अपने सुझाव, फीडबैक जरूर देते रहें हमारे इस कार्यक्रम को और बेहतर बनाने के लिए। और हाँ, हम आपको बता दें, अगर आपकी जानकारी में अपने इस क्षेत्र में, अपने बुंदेलखंड में ऐतिहासिक, आपके गांव की कोई विशेषता है, आपके गांव में कोई ऐतिहासिक मंदिर या ऐतिहासिक किला या मठ, जो भी इतिहास से जुड़ा हुआ है, आप जरूर हमें बताएं। 9425-1417-26 पर अपने सुझाव दे सकते हैं। नंबर पुनः सुने, 9-4-2-5-1-4-1-7-2-6। हम आपके फोन का या पत्र का इंतजार करेंगे। मित्रों, हम आपको बता दें कि आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं हमारे इसी नंबर पर और लिख सकते हैं अपने गांव का नाम, अपना नाम और कार्यक्रम के बारे में कि आपको कैसा लगा। तो बस अब अपने रेडियो साथी जगरूप को दें जाने की इजाजत। अगले कार्यक्रम में फिर होगी ऐसे ही मुलाकात। तब तक के लिए स्वीकार करें नमस्कार, खुश रहिए, मस्त रहिए।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हैं इस वक्त अपने दोस्त माता दीन के संग में। और दोस्तों हम लेके आ गए कार्यक्रम बुंदेली किस्सा। तो आप दोस्तों सुना थे कहानी को, ले थे कहानी को आनंद। तो साथियों आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने दोस्त माता दीन के संग में।
1: कुवते राजन के कुंवर और एक हती बानिया के लड़का।
0: अच्छा, मतलब एक हती राजा के कुंवर,
1: एक हती बानिया के।
0: आज दो जने हो गए,
1: दो जने हो गए।
0: हाँ।
1: अच्छी तरह से रहे उनकी दोस्ती।
0: हाँ।
1: उनकी दोस्ती रहे सो अपने काम काज के पढ़ लिख के जो भी आ गए सुबन खुद चले जावे।
0: दो के दो,
1: दो के दो शिकार भी अपने घोरो मस्के, भी अपने घोरो मस्के। अब जब वन में पहुंच गए तो जा शिकार खेली, बस शिकार खेली, खेल खाल के अपने घर पहुंच गए। अब कल को दिन बरतीत ने फिर करना।
0: अच्छा,
1: तो कल के दिन में भी बोले बोले कल ले बीजन बोले। अब बीजन ने कही कि हम तो भाई ससुराल जा रहे।
0: अच्छा,
1: अब राजन को नहीं है तो पतो के हमारे ससुराल देखे थे। अब राजन को बस बीजन थे अपने बानिया कितना से कब बीजन।
0: अच्छा,
1: अब भी है बादशाह बीजन और बादशाह दोनों जने रहो। कह के राजा हो बस बार मार बनवाए, दाढ़ी फाड़ी बनवाई, बार छटवाए, कले कवैया का खिलाने छट रहे, कले ससुराल जा रहे।
0: अच्छा,
1: अब जब नाव घेगो से नाव खो रख तो गांव भर को के फलाने के ब्याह है, फलाने के लगन है, फलाने के सतकरा है, फलाने के पक्या थे,
0: जा सही की
1: नाव खो सब पतो है। नाव कुआ तो राजन की कुमारी की ससुराल को पतो। बस अब बीरन के बार बन गए, अब राजन के बादशाह के बनने। बादशाह के बार बने तो बादशाह बोले बोले कर ले का बोले कर ले कही राजन के राजा बोले कर ले बीरन तो जा रहा ससुराल है, हमारा हम कैसे चले जावे। अरे बोले कर ले राजन के राजा, आप कैसे ससुराल तो पृथ्वी पे काउगी है ही नहीं है।
0: अच्छा,
1: तो बस बोले कर ले अच्छी सब भी तीन जने हो गए।
0: अच्छा,
1: के नाव होगा बादशाह होगा बीजन हो गए, अब तीन जने की दोस्ती हो गई। बस अब चले ससुराल के जाने। तो उनके राजन के कुंवर के पिताजी ने एक गेहूं कुज्जा खुदवाई थी, सुबह में बीजक लगवाओ तो कि जब बीजन की ससुराल को गल गई और जब बादशाह की ससुराल को गल गई।
0: अच्छा,
1: गली में से बटी लगी, उन्हें लगी प्यास। तो राजन ने हुक्म ढीलो तो चलो बीजन पिया पानी, तो बीजन गाँव पानी पीवे के लाने सुबह ने बीजक बांचो।
0: अच्छा,
1: बीजक बांचो वामे सुबह में गली अलग अलग। बीजन हो बदमाश, बीजन बदमाश हो।
0: अच्छा,
1: तो बीजन ने कहा करो किस्ता के पानी पी के बाउरी में और वह बीजक को भरा दो।
0: ले उसका
1: अगर हमारे अगर जब बीजक को जो राजा पानी पी भी आ रहा तो जब बांचे ले तो संग छूट गो, इसे के हमारे जैसा सारे चलेंगे
0: चलेंगे
1: तीनों जने,
0: तीनों जने
1: जाते बीजन बदमाशी के रहा। तो बस अब राजा पानी पी गए।
0: हाँ।
1: तो राजा ने पानी पियो जो तमाम बावरी में हेरी।
0: हाँ।
1: सुबह में बीजक में गिराव लगो रहे। तो राजन ने अपने खोबन की उली से बीच के भाई
0: धोदाओ
1: धोदाओ।
0: हाँ।
1: और फिर उगे बाचो बाचो भाई सुबह ने उन्हें प्रधान पूरा लिखो कि जा राजन की कुमार को रास्ता गई और जा बीजन की कुमार को रास्ता गई दोनों जने। तो बोले कहे बीजन बोले कहिए राजन के राजा बोले तू बहुत बदमाश है, बोले कल पुरखन को बीजक ने बता दिया है, हट कर ले के हम अपनी ससुराल जाते हैं अपनी ससुराल। तो बोले कल उनकी शर्तें लग गई।
0: अच्छा,
1: बोले कल जो पहले आज विदा करा के वो दिल बाउरी पे ठहरे क्या दिन किसी को बीत जाए। तो बस अपनी ससुराल चले गए और भी अपनी ससुराल कर ले वो जी सताई धक्का नाव। बोले कल जी राजन के संगे चले
0: सही है,
1: हमारे वर्ग के संगे का चले, हम सेठ आदमी और राजन के संगे जी वो हेल्पर चलते हैं। राजन की कुमार और सताई घर का दूरी है जा रहे हो बीजन अपनी सतारे चले रहे। अब सब राजन के कुमार जा रहे सो बन कजली में पहुंचे तो अब राजन की कुमार को लगी प्यास। बोले कल सताई का बोले कल ये राजन की राजा कल हमें प्यास बहुत जोर से लग रही और हमारे सागर सही से प्राण निकल जा रहा है, इसे पानी को देखो। बोले कर राजन के राजा बारह कोस में ना है पानी ना माय पानी अपन वन में हेंगे। बोले कर ले अरे क्या क्या बोल रहा है नाग गाते। बोले कर ले हो महाराज सुबह एक का खैबर पे चढ़ी सुबह देखते भी लंबे जिस ऊंची जांगा हो सब देखा ऊंची जांगा हो भी चढ़ी सो ये कुत्ता जैसा।

0: में बगली मर रहा गई। तो नाव ने सोची कि बिन पानी की बगली रहती नहीं है, पानी इधर होगा। तो बोले कल्ला राजन के राजा, पानी तो हमें कहीं दिखाना नहीं है, उत्तर दिशा में बगली मर रहा रही और बिन पानी की बगली नहीं रहती है, पानी जमी हो गई। बोले कल्ला चल तो ले जा। सुबह लोटा गड़ी लेके अरे खुली जाए, सुबह जन में दे पाई खुली से जीत गए कि आना। फिर बाहर आराम से मिले, आराम से मिलने गए चले गए। तो काकिस्ता हाथों के जोनवर लड़की राजा ने खून ब्याई थी, वो नदिया में स्नान कर रही।
1: अच्छा,
0: वो नदिया में स्नान कर रही थी। तो सुताई अक्का ने कहा करो कि झटपट पानी पी के और मचो सचो भर के और पहुंच गए। बोले कल सुताई अक्का, बोले कल ये राजन के राजा, बोले कल उस तालाब में पानी ये सो ठीक है तुम ले आए। बोले कल महाराज जाके ना पूछो पानी पी लो तुम। बोले आप तो पानी जब पिए जब जब बात पूछ ले, बात है क्या, क्यों पानी जो मचो लिया हो, ऐसा जल्दी हो थे को कि मचो सचो भर के आ गए। बोले कल महाराज कल वो तालाब है वो बड़ी अजीब का लड़की सफर रही है, तो उसके साथ हमारा मूर्छा छा के गिर पड़ी, तुम तो सब मचो सचो भर लिया, वो हम खुद की आसन मर जा रहे। अरे बोले कल बकरा भी सुबह पानी बगरा के तालाब पे पहुंच गए। तालाब पे पहुंच गए तो तालाब पे पहुंच के माने वो कल्ले सुदायक का, बोले कल्ले ये राजन के राजा, बोले कल्ले इसको लड़की को पूछने तो जरूरी है, जब मुंह बोले कैसे
1: सही है,
0: जब पीछो करें अपन ताए को और मुंह करें ताला ताए को। बोले कल्ले कहो, उन्हें कही

0: नवकक्का ने कही के
1: नहीं राजन ने कही जावा
2: राजन ने कही जावा
1: राजन ने कही जावा हां फिर कही उनने अब्बा बोले जल में ढाड़ी जो
0: अच्छा
1: अब्बा बोले
0: लड़की जो नहा रही
1: बा बोल रही है

0: तयक्का बोले कल्ले राजन के राजा सुनो हमारी बात अभी से बोल दो ना।
1: सही है
0: अभी से बोल दो ना बोलो कब का बना दे वाले
1: बताओ
0: हैं।
1: सही कही
0: बोले कल्ले नहीं अबे तो हम इससे और बोलेंगे।
1: हाँ
0: अब राजा बोल रहे हो
1: हाँ
0: भूले मोसा।

0: भाभी ने कही ऊंचे कलेरा नंदी नीचे करो बातन जिन बतराओ
1: ऐसे
0: और तुम्हारी आ गए चाला
1: अब लुबग्गा आ गए तुम
0: लुबग्गा तो उनने फिर भाभी से कही अरे भाभी आज नाश्ता तुम न बनाओ आज हम बनाए
1: ऐसा
0: भाभी से कही सुबह सुनने घरेला उतार के अपने नाश्ता बनाने के लाने तैयारी करी अब इन दोनों ने कही चला
1: अच्छा
0: बोले कल देखो अपन को कगुआ गेल गवार बना दी
1: बिल्कुल
0: अब भोजन नहीं करने भोजन नहीं करने इसकी
1: सही कह रहे
0: अब खुला खुला थे अभी नहीं खुलो हमें तो सलाह हो रही दो जन की सलाह हो रही नाव की और राजन की सुबह सवती सोने गुंजन की भोजन बनाए भोजन बना के और आज्ञा दे दी भोजन की लाना तो दोनों जने भोजन को गए भोजन को गए साफ सोने चाहे एक लो चाहे खाई हो चाहे दो खाई हो और वहां से बने थना ना जवाब ठोको
1: अच्छा
0: ठोकनी ठोकने ना तो भीड़ कैसे खोले वहां
1: सही है।

0: जी तो उन्ने टाटी सरका के मोए कच्ची अब अभी खुल गओ के जई है जा
1: हां सही कह रहे हैं जी क्या बात है
0: जब भाई बब्बा ने बात खोली सो बोल समझ गए तो उन्ने मां टाटी माटी सरका के ओ बस सुता जा काने पे झटपट जो कच्ची राजन चली तो बाप बांधी
1: हां
0: ओ बाप नी बांधी ओ बस टाटी माटी जो कमे लगवा के कल काए काए राजन बोले कल अभी तक क्यों आया बोले कल भाज मैंने अपनी टाटी धोई वो आपकी धोई तो फिर मैं आया
1: हां जैसे टाइम लगे
0: जैसे टाइम लगे हां बोले कल सुन ले कल सिपता ना उन पाए हां वो अपन घूरो कस के तैयार हो ये इस पापन को मिलवा जाने हां इसको मिलवा जाने तो बस ये थी सो तैयार हो गए जहां से कराऊंगा तो उन्हें भज्जा घूरो कस हां सब रात में घूरो कसरा सुबह ऊपर को पले चवन पीटते ने कस दो
1: अच्छा
0: वो पले च पीटते के तन दिन तो गई आगे बारी आगे
1: हां हां ये मैं भी दे रहे
0: हैं ये भी दे रहे हैं जरा कि कैसे
1: हां
0: ये सवेरे भाव जाए हां तो बस जो राजन का हां साफ चल भी हो गए तो राजा का कले के क्या है जो ऊपर का पले च नीचे कस दिया जाए हां अच्छा कस तो ने भज्जा छोड़ चार के दोनों राम के पास है जंगल झाड़ी वाले निकल निकल के भाभी पूरा परोस की जनी ने दोहा रेशम डोरा पाट कोरे जले दी और चटका।

0: देखो रिश्तेदारी है वो जब तुम दिन चटकाओ और टूटने से जब जुड़े नहीं वो जुड़े सुर में गांठ पर
1: जाए
0: गांठ पर ये जाओ
1: नहीं गए
0: उनके तो रुक गए जो पड़ोस की
1: पड़ोस की ने कही जवाब
0: पड़ोसन ने सोची कि अगर हम भोजन कराऊ तो पैर वेर को संग है
1: सही है
0: बेर बढ़ के जाओ तो उनने हदीसो जैसे कछु पुटिया पर मुद की वही रानास में ले गए
1: फिर मई खून पाड़िया ले गए
0: मई खून वही जहाँ उनकी रानास थी फिर पहुंच गए भाई सतखंडा पे पहुंच गए तो अब उनने सोची रानी ने कि अगर भोजन में है तो ये भूखी अब रात को है समझ गया ना हो तो हम भोजन नहीं ले जाए तो भोजन उनने लगा थाली को भी पहुंची तो लगा फारी जो छाजी पे चढ़ी भी तो बिस्किया पे रहती भी तो वो बजो बिस्किया बजो तो उनने बिस्किया की आवाज की सुनकर मोर भूल गई बन गई पड़ोसन दुहा दे रही संक बाजे।

अरे आज नहीं तो अरे भोर जी, अरे अबे नहीं खाओ नहीं तो भोर खा लो, इसे तुम बोलना उनसे, नहीं कहीं बाने फिर दो जाकर।

0: शंख बजे से साधु जगे, बम घले रजभूत। अगर इतने में के बम घर रहो वो नहीं जग रहो तो कूद कब कहे
1: सही है का के का हो
0: का हो
1: कते दुनिया भगत जावे विश्व ना का जाए।
0: अब जब इतनी बातें हो गई तो परोस में पतो होगा।
1: हां
0: के रानी राजा के पास में भी गई। अब फिर की दोहा कह रही है

से लड़े की भाली रे सो मेरे री पे ब्याए जी। अरे ऐसी सासों का काम की हती तेरी कूखन बांझई हो जाती, और ऐसे सब कुछ जाए तो लड़की होती तो परोस मेरी री पे ब्याह शादी कर देती। तो बोल रही तो गड़ गया है ना।

सुबह जो पटक थार वो भी भगिया जब थार पटक के भी भगिया ही सुबह मेरे में अब रात को समझ जब कहाँ जा रहा है जो सवीरम हो सोने घोरो मस्को चलिए तो ससुर साहब ने कही करी दीवान जी ऐसे नहीं चलो हम आपकी स्वागत कर रहे और सब बात को बाहुलाओ और भोजन करो भोजन करके हम आपकी पूजा कर रहे ठीक है जो भी रहते हो डट गए खाना खाओ खाना खा के और पीना सुनने सजाई तो उन्हें बिदाऊ की कई वो उन्हें खाना पीना सब और महीना भर के लाने रखता खाती जे घर चले गई बस आओ अब भी हती सो अब पीना हकावे बारे हती सो भी ऐसे गाँव के बारे करी तो उनमें मार जताई फिर भी भक्त छोड़ दी अब खुद उनने हकाई अब सुताई अब काल कबाजी ने हकाई सुबह हका के हो वह सब कहीं ऐसी और चली हुई तो शाम हो गई से एक बमूरा को पीलो रहे से उतरे बस गए शाम हो गई से बस गए बस के में अब बोले कर ले सुनो सुधा का बोले कर ले का कर ले ही पापन को ही छोड़ जाने यही रुकता है अब्बा सुन रही थी बस सुन रही थी सुबह आने के ठीक है अरे बोले कल रानी की फार के फिर रानी की फार के पातस लगती आई तो खाना खाओ खाना खा कर पड़ी पड़ी सोई अब रानी ने सोची कि ये भगत तो हमें छोड़ के ही इसे का करें जब ये सुबह घोड़े की पछाई की ईड़ रही ईड़ बजत बात सुबह डोर बजी थी सुबह छोड़ के बाने पीने से मार लाए बडोर कि ये भगे तो जब ईड़ टूटे समय यहाँ का अगर हम सो गए आँख खुल जाए तो हम इसे कचू किया ले सुबह सुनने के लिए घोरो भंसाई रात भाई को बड़ा सुबह तनो वो तनी बार दूर कहीं दूर सो नेक चावा पट्टों को घोरी में सुबह दूर पड़ी सुनने कही बते रानी

ना दृष्टि थर में बुझा गई हमें, हम न जई गांव के रहे न बई गांव के रहे, अब ये सुन अलवारे के चले गए, भी अपने भवन को चले गए। अब रानी ने अति सुबह तीन अस्कू बेग घर वाले और बाने हकाओ हकाओ को रानी को गाड़ी हकाओ थी, तीन अस्कू हकाओ थे रानी तो हका जो बजिया से कचुवती तो राजा गिलंद की बाग में ये जा रही सुवन ने भज्जा घर वाले नाय के टूपी माय की बोलनिया टूपी रानी वो तो मालिन है जो मालिन गोली गोली कर लेगा, अरे कौन कहाँ की पाप है नारी कहती है तू नहीं, एक मोर रानी ने वो मालिन को भीतर बीरा दे जाए अपने अभी तो राजन की बेटी थी उससे कछु मोरन को कछु टूटो तो रही हकी भी तो अपने इंतजाम में अपनी कुठज्जा में उन्हें दुकान रहे कहाँ रहे सुई ऐसे ही कछु बिलादना हो गए दुकान दुकान तो एक दिन आओ अब उनकी बेटी हती राजन की जमदीप नाव तो का नाव तो बेटी को जमती जमती नाव तो बेटी को सो बिन्न फूलन की तुला तुलक

काकेरे अपन खाजी बताए अपने जीवन की सभी बातें और सभी अनुभव, तो सुनो जी काकेरे।

0: श्रोताओं को भैया अपने काशी राम की नमस्कार पहुंच जावे। और भैया आज हम आप सब्जन के लाने एक बहुत ही नौ नौ सौ कार्यक्रम लेके आए हैं, जिको भैया आप सुनो और सभी पंच सुने। और भैया ये कार्यक्रम को नाम है सुनो जी का कह रहे, तो आज अपन बुजुर्ग दादा भैया की बातें करे और सुने। और एक क्रम में राम गोपाल दादा है, अपन इनसे बात करे और इन जी अपन को कुछ बताए। लेकिन ई के पहले अपन सुनत है एक बहुत ही नौने से गीत को, जी को भैया गाव है रजनीश दुबे ने। और देखो ऐसे शब्द कहे इनने इसमें के आप इन शब्दन से गीत में इनने समझाओ है का कही। दरस राम के पाके और हो वे धन्य भाग जहाँ के, अगर दर्शन अपन भगवान राम के पाले हैं तो अपने धन्य भाग हैं। और भैया तो ये गीत को सुनो, आप सुनो सभी पंच भैया।
1: दरस राम के पाके

0: हाँ तो भैया अबे सुनो, अपन सब जन ने जो गीत और रजनीश दुबे जू ने कितने अच्छे नौनी तरीके से अपन का गाओ के सुन बताओ है, और अपन सब जन ने सुनो है। अब अपन बात करते हैं राम गोपाल कुशवाहा जू से।
1: दादा राम राम।
2: राम राम।
1: अपनो दादा नाव का है
2: राम गोपाल।
1: तो दादा अपनी उम्र कितनी है आप?
2: हमारी उम्र 70 है।
1: अपन कांके रे विवाह हो दादा?
2: सेना के पूर्व पटो ग्राम सेना जिला टीकमगढ़ तहसील नेवाड़ी मध्य प्रदेश।
1: तो अबे आप दादा का करे थे?
2: ये हल्को हल्को काम करे अपने ढो बच्चे देखे ना बस।
1: और
2: वर्कर हम कहा बस किए काम वाम हम कहे तुम नगर।
1: आप अपने परिवार वाहन से का के वो चाहते हो?
2: परिवार वाहन से का कहते विचार को जब तो जैसी समस्या है तो अपने भगत रहे।
1: आप जो बता दादा कि बुढ़ापे में अपन का कौन कौन सी दिखते हैं उन लगत और का परेशानी दिखते हैं आओ आती है अपन का
2: बुढ़ापे में? तो देखो ना खाना मुड़ा एक बात देखो घाम लगा काम दौड़ नहीं पाओ नहीं पाओ घूरे फिराट हर एक बात की मतलब नेक में मुश्किल दिखा दो अगली बार।
1: और वैसे वह समस्या है अपनी?
2: अब वह समस्या जो बाल बच्चे खा रहा है तो भी हमें ले आया हम खा रहे
1: अपने मोड़ी मोड़ा अपने पास बैठ भी आओ
2: आओ बैठ जाओ जी नहीं आओ थे तू
1: अच्छा
2: अस्पताल जाने
1: और अपने सेवा खुशामद के बारे में आपका क्या सकते?
2: सेवा खुशामद सब करा थे जनाब जी बैठे अब बैठे भी हैं तब ये लोग ठीक नहीं है चला फिर कर लेंगे तना
1: दिक्कतें हैं उनको अपन कैसे झेल सका था का कर सका
2: आप झेल सका तो बैठ वो है सीधी बात है पैसा जो खर्च तो कही है अरे कछु ना कछु ना तो 10 रुपए जल उसको तो खर्च है ही आदमी को मान के चलो कछु ना कछु वो 10 रुपए उठा के चल जाते हैं।
1: दिन भर आपको कैसे कटा था?
2: दो बच्चे उनका दिमाग लड़ा ले सिगारे सिगारे अपने छाने में चल बस।
1: अच्छा और अबे तो आपका दिक्कत दिखावे की तो दिक्कत कछु है नहीं ऐसी?
2: हाँ खरीदी
1: हाँ जैसे का आप बुढ़ापे की
2: बुढ़ापे मतलब
1: दिक्कतें आदमी का
2: दिक्कत तो देखे के नहीं होती नहीं है तुम्हें जो कागज है जो जो जो नहीं बांस पा रहे हम मतलब और उसी है दिखा कगदा नहीं बांस पाऊ मेरे दिखा सगड़े।
1: और अच्छा ऐसी कौन अपनी परेशानी है जो आप ना कह सकत हो? खावे पीवे की आपकी का इस्तेमाल है?
2: खावे पीवे को जो भाई में है तो खा।
1: अच्छा अपने माता पिता की सेवा में और बेटी में का अंतर है?
2: पहले इज्जत रहती समय अनुसार इज्जत रहती इज्जत नहीं आया और पापा जाना फैली पापा ही जाना फैली के मतलब अपनी अपनी हो चाह रहा हूँ आदमी हमारे वाले बच्चों जो चीज मिल जाए हमारे को मिल जाए दूसरे की जठानी न मिले देवरानी न मिले ये ऐसी समस्या है मतलब अब के समय में।
1: तो अपन का के वो चाहते हैं कि कैसे हो चाहिए अब सब
2: जब जो हो चाहिए कि शांति हो चाहिए प्रेम हो चाहिए सब में बड़ा प्रेम प्रेम है तो उसे कबू आपत्ति नहीं आए प्रेम है तो सब मतलब आपत्ति न आए उसे शांति है शांति से मतलब हरी सुविधाएं कबू आपत्ति न आए।
1: अच्छा जो आपने प्रेम की बात कही तो ये प्रेम में और काका छिपो अगर प्रेम ले तो काका अच्छा हो सका
2: प्रेम जो अपने मतलब ईमानदार काम प्रेम में और काम

0: प्रेम मतलब जीव अजीव काम प्रेम
1: लड़ाई झगड़ा ना उज्जे पैसा पैसा टका खर्च ना उज्जे
0: हाँ घरे पैसा रे मतलब जो मतलब लड़ाई झगड़ा को काम
1: तो अपनो का के वो है रेडियो में जो भी आपका सुने आदमी कैसे अपने बाप मताई की सेवा करें चाचा जी और कैसे रहे चाचा जी आपका कंचाओ सब जनन से आपको का के वो है
0: बात तो बात खूब बड़ी है मतलब ऐसे बाप मताई की सेवा करें
1: तो वही बात बड़ी बात मतलब शुरू से आप बताओ
0: यात्रा ना कथी
1: हाँ यही बात आप यही बात पूछना चाहो शुरू से बता दो आप के आप का के वो चाहते
0: जो अपने बाप मताई को माने उसे भगवान को माने सब इज्जत ले प्रेम ले लक्ष्मी जी ले सब मतलब नहीं की ऊपर है बाप मताई को छोड़ाओ तो तुम्हारे बाल बच्चे छोड़ा मतलब आगे चली जाइए तो मतलब
1: अबे आप तीर्थ यात्रा की बात कर रहे थे
0: तीर्थ यात्रा मतलब जैसे पैसा है देने बाल बच्चे चले जाते तीर्थ यात्रा हुआ अब पैसे नहीं तो जा कर जो मतलब है जब कहो के चले जाओ ये पैसे आगे चले जाए अब जैसे पैसे ही नहीं जाता तो कहाँ जा क्या करे रोटी नहीं खा पा रहा है आँख से कमजोरी हो गई पैसा खर्च को मिल नहीं रहा है पेंशन बन जाए तो अच्छी बात है
1: और कहते हैं वो चाहू था
0: जी उचाऊ के आराम चाहू बस मिल जावे पेंशन बन जावे तो पैसा खर्च को जाओ गए लड़का वाले अपने बाल बच्चे को समान खाने दीवे तीन चार सौ को महीना मिल गए तो अपने उम्र खाद चला उठे
1: ठीक है दादा जब आपने अच्छी जानकारी दी तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो देखो भैया अबे अपन खान ने बुढ़ापे की सारी बातें बताई हैं कि ई बुढ़ापे में कौन कौन सी दिक्कतें हैं का परेशानी है और अपनो जीवन ई उतरती अवस्था में कैसे कट रहो है और एक बात और इनने अच्छे तरीके से बताई है कि अगर पैसा होते तो हम घूम लेते कोनो आमदनी हो जाए या को हमें पैसा दे रखे चारो धाम कर है और भैया ये तो बातें अपनी अबे हतीसो सब जन ने सुनी ही है लेकिन आप लोग जा भी कह रहे हैं उन्हों को भैया बिल्कुल बात नहीं मैं बताएं तो अपन और सुनत है एक गीत खो और ये गाँव है भैया वंदना अहरवाल ने और इनने देखो इस शब्द में का कहो गौवा के गोबर मंगाओ यानी गऊ के गोबर मंगा के जी अपने और चौक पुरा रही हैं और शुभ संदेश की बातें कर रही हैं और संदेश दे रही हैं तो भैया अपन सुनो सवई पंच भैया सुनो।